आई सवैया पाए गए जब ते तुमरे तब ते को आंख दरे नहीं आने राम रहीम पुराण कुरान अनेक कहे मत एक न माने सिमरत शास्त्र वेद सब है बहु भेद कहे हम एक न जाने सरी असबान कृपा तुमरी कारू मैं न कहो सब तोहे बखाने दोहरा सगल द्वार कौ छाड़ कहे गय तुहारु द्वारु वहां गए की लाज आस गोविंद दास द्वारु राम कली महला तीजा आनंद एक ओंकार सतगुरु प्रसाद आनंद पाया मेरी माए सतगुरु मैं पाया सतगुरु तां पाया सहज सेती मन वजियां वधाइया राग रतन परवार परियां शब्द गा बणाइया शब्दो तां गावो हरि के रामान जिनी बसाया कहे नानक आनंद हुआ सतगुरु मैं पाया ए मन मेरिया तू सदा रहो हर नाली हर नाल रहो तू मन मेरे दुख सब बिसारणा अंगीकार हो करे तेरा कार्य सब सुवारना सब न गल्ला समरथ स्वामी सो क्यों मनो विसारी कह नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले साचे साहिबा क्या नहीं कर तेरा ए करता तेरा सब किश है जिस दे सो पावे सदा सिवत सलाह तेरी नाम मन वसावे नाम जिन कै मन वसया वाजे शब्द कनेरे कह नानक सचे साहिब क्या नहीं कर तेरा ए साचा नाम मेरा आधार साच नाम आधार मेरा जिन भुखा सब गवाइया कर शांत सुख मनाए वसया जिन इच्छा सब बजाइया सदा कुर्बान किता गुर विट हो जिस दिया ए वड्याइया कह नानक सुनो संत हो शब्द धरो प्यारो साचा नाम मेरा आधार वाजे पंच शब्द तित घर सुभागै घर सुभागै शब्द वाजे कला जित कर धारिया पंच दूत तुद वस कीते काल कंटक मारिया तुर करम पाया तुद जिन काओ से नाम हर कह लागे कह नानक तै सुख होआ तित घर अनहद वाजे आनंद सुनो बडभागी हो सगल मनोरथ पूरे बार ब्रह्म प्रभु पाया उतरे सगल बसूरे दुख रोग संताप उतरे सुनी सच्ची बाणी संत साजन पैसर से पूरे गुर ते जानी सुनते पनीत कहते पवैत सतगुर है पर पूरे मिन मंत नानक गुर चरण लागे वाजे अन हर तूरे मुंदावणी महला पंजवां थाल विच तिन वस्तु पयो सत संतोख विचारो अमृत नाम ठाकुर का पयो जिसका सबसे आधारो जे को खावे जे को पुंचाए तिसका होए आधारो ਇਹ ਵਸਤੁ ਤਜੀ ਨਹਿ ਜਾਈ ਨਿਤ ਨਿਤ ਰੱਖ ਉਰ ਧਾਰੂ ਤਮ ਸੰਸਾਰ ਚਰਨ ਲਗ ਤਰੀਐ ਸਭ ਨਾਨਕ ਬ੍ਰਹਮ ਪਸਾਰੂ।

0: अगे पर तक दे जी अगे पर तक दे
1: कोई परमान नहीं अगे पर तक दे
0: अगे पर तक दे जी अगे पर तक दे
2: कला

ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਇੱਕ ਅਮਰ ਵਾਸ ਹੈ, ਕੁਦਰਤ ਕਰਕੇ ਵਸਿਆ ਸੋਏ ਵਕਤ ਵਿਚਾਰੇ ਤੋਂ ਬੰਦਾ ਹੋਏ। ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ, ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ, ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਹੋਂਦ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਤੇ ਖੜੀ। ਵਕਤ ਦੀ ਵਿਚਾਰ, ਵਕਤ ਵਿਚਾਰੇ ਤੋਂ ਬੰਦਾ ਹੋਏ। ਜੋ ਵਕਤ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸਾਰੀ ਹੋਂਦ ਵਕਤ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਤੇ ਖੜੀ ਕਰ ਦਿੰਦੀ। ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਵੇਖੇ ਔਰ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ। ਵਕਤ ਨੂੰ ਸਮਝੇ ਔਰ ਵਕਤ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਨ ਦਾ ਢੰਗ ਲੱਭ ਲਵੇ। ਕੁਦਰਤ ਕਰਕੇ ਵਸਿਆ ਸੋਏ, ਜੇਕਰ ਸਰਦੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਗਰਮ ਕੱਪੜੇ ਲੱਭ ਲੈਂਦਾ, ਗਰਮੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਬਾਰਿਸ਼ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨ ਲੈਂਦਾ, ਲੂ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਬੰਦਾ ਠੰਡੀ ਥਾਂ ਲੱਭ ਲੈਂਦਾ, ਔਰ ਸੀਤ ਲਹਿਰ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਬੰਦਾ ਧੁੱਪ ਤੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ। ਮਾਹੌਲ ਦਾ ਸਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਸਕੇ, ਉਸਦਾ ਗਲਤ ਨਾ ਪਏ, ਇਸ ਢੰਗ ਦੀ ਜੁਗਤੀ ਲੱਭਣੀ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਮਹਾਨਤ ਹੈ। ਰਾਤ ਤਾਰੀਖ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਦੀਵਾ ਜਲਾ ਲੈਂਦਾ, ਵਕਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਕਰਕੇ ਅੰਧਕਾਰ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਮੁੱਚੀ ਕੌਮ ਇਸ ਗਹਿਰੇ ਅੰਧਕਾਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਤੱਕ ਵੀ ਦੇਖੀਏ ਮੰਜ਼ਿਲ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਰਸਤੇ ਦੇ ਪਾਂਧੀ ਹਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਮੰਜ਼ਿਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇ। ਰੂਹੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘਟਨਾ ਘਟੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਹੈ ਇਹ ਸਿੱਖ ਕੌਮ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਾਜਿਆ ਹੋਇਆ ਖਾਲਸਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਦੋ ਕੌਮਾਂ ਦਾ ਜਗਤ ਦੇ ਆਮ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਅਪਮਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਨਿੰਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਦੋ ਕੌਮਾਂ ਦਾ। ਯੂਰਪ ਦੇ ਯਹੂਦੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਿੱਖ, ਅਤੇ ਦੋ ਕੌਮ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਉੱਥੇ। ਗੱਲ ਗੱਲ ਦੇ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਾਕ ਦਾ ਮੌਜੂ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਗਾਹੇ ਬਗਾਏ ਉੱਥੇ ਮਜ਼ਾਕ ਦਾ ਮੌਜੂ ਪਹਿਲੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਨ ਕਦੀ ਕਦਾਈ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਮਜ਼ਾਕ ਦਾ ਮੌਜੂ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਿੰਦਾ ਅਤੇ ਮਜ਼ਾਕ ਕਿਸ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਇਤਨੀ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਬੰਦਾ ਸਿੱਧੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਉਹਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਮਜ਼ਾਕ ਵਿੱਚ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਸਿੱਧਿਆ ਨਹੀਂ ਨਾ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਮਜ਼ਾਕ ਵਿੱਚ ਬੰਨਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਕੇ ਉਸਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨਿੰਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਸਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਅੱਗੇ ਹੈ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹਦੀ ਕਿਉਂ ਨਿੰਦਾ ਕਰੇਗਾ, ਹੈ ਹੀ ਪਿੱਛੇ ਵਿਚਾਰਾ। ਨਿੰਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਸਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਮੈਥੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ, ਔਰ ਅੱਗੇ ਈਰਖਾਲੂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਦੁਸ਼ਟ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾਲੂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤੋ ਕੀ ਕਰੇ? ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਾ, ਕੋਝਾ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਦਾ, ਪਿੱਛੇ ਸੁੱਟੀ ਪਿੱਛੇ ਸੁੱਟੀ। ਸਮੁੱਚੇ ਯੂਰਪ ਦੇ ਇਹ ਕੋਝੇ ਮਜ਼ਾਕ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਾਰਨ
ज्ञान विच विज्ञान विच धन संपदा दे यहूदी यूरोप विच अगे चोटी दे साइंसदान चोटी दे धनवाद वड़े वड़े कारखाने उद्योग दे मालक बड़ी बड़ी बिल्डिंगों दे मालक यहूदी समुचे यूरोप दे देशां विच धन की बहुत वड्डी ताकत इन्हां दे कोल इस देश दे करीबन करीबन आर्थिक तौर पर समाजिक तौर पर धार्मिक तौर पर सिख करीबन करीबन सारिया कौमों नालों अगे अगे अपने तो अगे होना ईरसालू अखरदा है औखा करता है परेशान करता है और मैं देखना साढ़े नालों ज्यादा दुख सहारे ने यहूदिया ने इतिहास पढ़ के देखो एक हजार साल तो भी ज्यादा ये मार खाते ईसाइयों तो मुसलमानों तो हालांकि मैं देखना रिश्ता बड़ा गूढ़ा है इन्हों का मुसलमाना का इब्राहिम दियां दो बेगमां सन अजरा ते असरा अगह चल के इब्राहिम ने असरा नू तलाक दे दिता और उदों तलाक दिता जदों बच्चे नू जन्म देने वाले घरों कर दिता अजरा कोल रही अजरा तो उसी पुख तो जिस बच्चे का जन्म होया उस तो अगह चल के कुरैशी वंश चले तो कुरैशी वंश से मुहम्मद साहब का जन्म होया वो जी असरा से उसकी कुख तो जिस बच्चे का जन्म होया उस तो यहूदियों की वंश चली असराइलियों की वंश चली वो हजरत मूसा का जन्म होया इंज देखिए कि दोनों कौमों का उपर शिखर से देखिए जड़ बुनियाद इसको ही मरकज इसको ही जितों उपजे हैं लेकिन रज के ईर्ष्या मुसलमान किसी कीमत से भी यहूदी नु बर्दाश्त करने को तैयार नहीं। मैं तेहरान तो किधरे प्लास्टिक दे उसे बर्तन बहुत खूबसूरत बनते हैं किसी सज्जन ने मैं भेंट कर दिए एक डिनर से मैं तेहरान तो कुवैत जाना कस्टम वाले ने जब मेरी तलाशी ली समान दी तो मैं कहने लगे ए सैट क्यों ले आयो डिनर सैट मैं कह मैं तो हिंदुस्तान जाना कुछ दिन इतने रहना है कह लगे साढ़े देश नहीं आ सकता क्योंकि इतने लिया क्या मैं तो कारण एक प्लास्टिक का बनया है आख लगे फैक्ट्री यहूदी रही है तेहरान के उसे बन यहूदिया की फैक्ट्री की बनी हुई कोई चीज साढ़े देश नहीं आ कोका कोला उसके मालिक किधरे यहूदी ने अरब देशों से नहीं दिख सकता इनकी मेरे से सहन टैक्स है वो फैक्ट्री भी यहूदिया की है अरब देश से नहीं दिख सकता जिसनों यहूदी बनाते हैं वो अरब देश नहीं चीज आ सकती नहीं कोई ला सकता मैं भावें अपने तौर पर कहा भी मैं नहीं पता किस गल का ता भी उन्होंने डिनर सेट तोड़ दिता मेरे सामने आखिर यहूदियों की बनी हुई कोई चीज असं नहीं देखना चाहते इस देश में नहीं आनी चाहिए क्योंकि फॉर्मल हो चलो नजरअंदाज कर रहे हैं किस देश का वासी लिया असं उस अरेस्ट करते उस पर मुकदमा दायर करते किसी बारनर हो बार दे लिया मैंने पहली दफा पता चलिया इन्नी नफरत यहूदी नो मुसलमान नहीं बर्दाश्त करता यहूदी मुसलमान नो नहीं बर्दाश्त करता एक हजार साल तक ये भटकते रहे डे खाते रहे ज
बेघर कभी किधरे रुलन कभी किधर रुलन। हालांकि दिमागी तौर पे बड़े महान धार्मिक तौर पे बड़ी सूझबूझ रखने वाले इबादत गुजार भटके बहुत बड़ी भारी मार खाती। लेकिन गजब की गल यह है कि सब तो ज्यादा मार खा दी यहूदिया ने। अज समुची दुनिया की सब तो ज्यादा संपन्न यहूदी महान यहूदी चंगे डॉक्टर साइंसदान धनाज आलम पागल चिंतक इस कौम मौजूद ने अज भी मौजूद ने और इस कौम ने इस तरह के पैदा किए। जिस दिन का खालसे का रूप आलमी वजूद में आया उस दिन का ही औकड़ा देखा उस दिन का हू बहु बिल्कुल यहूदियां की तरह। यहूदियां ने अपने शरीक मुसलमानों ने बर्दाश्त नहीं किया। शरीक इब्राहिम दी दो बेगमां सन इंज कह लो खून से इब्राहिम का ही चला चाहे मुसलमान ने चाहे यहूदी शरीक ने नहीं बर्दाश्त किया। कहने शरीक जब दुश्मन बनेगा तो बड़ा भयंकर दुश्मन बनेगा मामूली दुश्मन नहीं है। शरीक नु सारे राज पता है शरीक नेड़े रह चुके उसनु सब उतार चढ़ाव का पता है कितों मार करनी है किवें मार करनी है सब कुछ पता है। तो बहुत बड़ी मार मुसलमानों तो यहूदियों ने खा दी और लगातार खांदे रहे। उस मार ने उन्होंने गहंदी कला विच नहीं सुटिया उस चढ़दी कला विच गए एक समुचे अरबों में घिरया होया उन्होंने अपना देश भी बना लिया अचरा रही और पैर जमा के बैठे बड़े पायदारी। खालसे का शरीक हिंदू यहूदी का शरीक मुसलमान खालसे का शरीक है। जिस तरह एक इब्राहिम से उस तो ये दो कौम अगा चल के जो है फैलिया वधिया मूल धारा हिंदू ते सिख दी एक है। जिन्हें एक दरिया वगदा है कि उदिया दो धारा बन जान एक सज्जे वगन लग पे एक खब्बे तो वो अपने अपने रस्ते ते सागर तक पहुंचने की कोशिश करें। इस तरह मूल धारा तो एको है अगर चल के दो शरीका चाह रही है तो मैं सिर्फ इस तरह शरीक जिमें दुश्मन आता है दूजा तीजा नहीं हो सकता। पड़ोसी जितना भयंकर दुश्मन हो सकता है ओपरा नहीं अपना भरा जितना कमीन दुश्मन हो सकता है उतना दूजा तीजा नहीं क्योंकि वो जब मार करेगा तो उसमें सारे उतार चढ़ाव का पता है सारिया कमजोरिया का पता है। हिंदू बारे तो हिंदू ही संत सनातनी संत श्री नामदेव जी महाराज का कहना है कि हिंदू अन्ना तुरको काना दोहा से ज्ञानी सैना के अंदर गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज देवास और श्री नामदेव जी महाराज जी का महाराष्ट्र का एक प्रसिद्ध संत पाठ करदियां इन पंक्तियां पढ़ के लंघ जाते होंगे थे। इन दो चार महीनों मैनू थोड़ा जिहा गहराई दे झात मारन का मौका मिले इस पंक्ति भी नामदेव कह की रहे हिंदू अन्ना तुरकु कण अंधा है सच्चाई नू वेखदा ही नहीं सच्चाई नू वेखण दे बिल्कुल असमर्थ कि सच ते ईश्वर है जो ईश्वर पत्थर है तो पत्थर की पूजा करदिया करदिया दिल पत्थर हो जाएगा दिमाग पत्थर हो जाएगा कुदरती गल जैसा दे तैसा हो गुरु ग्रंथ साहब का फैसला जिस नाल मनुख जुड़दा वैसा हो जाता है। परमात्मा सच है सच परमात्मा है तो हिंदू का सच हिंदू का परमात्मा पत्थर है तो पत्थर का पुजारी तो पत्थर हो गए उसका दिमाग उसका दिल और बिल्कुल इन्होंने सबूत मुहैया कर दिता
500 गुरुद्वारे छाड़ के सुआ कर दिखे, हजारा गुरु ग्रंथ साहब दिया भीड़ा छाड़ के सुआ कर दिखिया, और मजलूमा नौजवाना बुढ़िया तक न जिंदा जला दिता। ये कम पत्थर कर सकता है, मनुख नहीं कर सकता। और ये गुरु ग्रंथ साहब जी दी पंक्तियां जो नामदेव दियां ने बड़ी जरूरत नाल उसने आखियां ने, समुचे हिंदू जगत नूं हुण सुनानियां चाहीदियां। हिंदू अन्ना अंधे, बिल्कुल अंधे। देखो हजार अंधे आ रहे हो, हजार अंधे, एक बेचारा सुजाखा आ रहा हो गली तो उन्हें लंघना है दूसरी दिशा च, के सामने आ रहे हैं अंधे, अंधिया ने भी टकराना है, क्योंकि दिखाई तो उन्होंने कुछ देंदा नहीं, टकराना है। और जो सुजाखा बेचारा बच के लंघने की कोशिश भी करेगा कि अंधिया ने के धक्के मारने और उसका भरता कर देना, उसका कचूमर कर देना। ये अज का अंधा नहीं, ये सदियों तो अंधा है, क्योंकि पत्थर अंधा है। पत्थर विच वेखण की समर्था नहीं है, पत्थर विच सुनन की समर्था नहीं है। और जब कोई सच सुन नहीं सकता, सच वेख नहीं सकता, तो उन्हें साहित्य भाषा च कहने में पत्थर है। न सच वेख सकता है, न सच सुन सकता है। हिंदू सच सुन नहीं सकता। दो साल तो मंजी साहब के स्टेज तो एक सच्चाई बुलंद बांग सुनाई जाती रही, सुनाई जाती रही, सुनी सुनी। सच्चाई है कि इन वेखण की कोशिश भी नहीं की थी। और मैं लवज फिर दोहरावा, अज का अंधा नहीं, बहुत पुराने समय का अंधा है। किसी वक्त श्री कृष्ण ने समझाने की कोशिश की थी दुर्योधन ने, आख्या पुरखा तू पांच पिंड ही दे दे तो सुलह हो जाए। महाभारत का जोड़ा बहुत वड्डा खून खराबा होना है, बचाव हो जाए। तो मैं पांडवों नूं राजी कर लेना, चलो थोड़े ते ही राजी हो जाए, पांच पिंड ते ही राजी हो जा। तू इतनी लंबी चौड़ी सल्तनत का मालिक, पांच पिंड इन्हां नूं दे दे जिहड़े तू धोखे नाल जीते ने, जीए धोखे नाल। पिंड का मैं पांच सुनिया जितनी भी जगह नहीं देनी। महाभारत का युद्ध होया, अद्धे तो वध देश तबाह हो गया, बर्बाद हो गया। पांच पिंड ते नहीं दिते, सारा देश तबाह कर दिता। तो मैं कहनी अंधे ही कर सकते ने, बहरे कर सकते ने। मैनू इंज लगता है कि सारा देश तबाह ते कर सकणगे, पांच पिंड नहीं देणगे। क्योंकि मोर लाई है हिंदू दी विचारधारा से, मोर लाई है भगत नामदेव ने कि हिंदू अन्ना सुरखू खाना। जो किधरे ये बोल गुरु नानक दे आंदे, गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दे आंदे, कि शायद इन्हां अंधिया ने यह आखना सी कि ये बोल दे जांदे। गुरु नानक ने तो कहना ही, गुरु गोबिंद सिंह जी ने तो कहना ही, पर क्षमा करनी इन्हां दी उम्मत दे तां, इन्हां दी बिरादरी दे तां। नामदेव हिंदू, तो कहिंदा है हिंदू अन्ना तुरकू कां, तुरक मुसलमान अंधा नहीं, कां एक अख है, सच्चाई वेख सकता है, लेकिन बिल्कुल अंधा है। मुसलमान सच्चाई वेखदा, चलो अपने नजरिए नाल वेखदा, दूजे के नजरिए नाल नहीं, अपने नजरिए नाल, पर वेखदा ते है। इतिहास में थोड़े सामने रखा, मुसलमान वेखदा है, हिंदू नहीं वेखदा। इहदे सुभाव च नहीं है, इहदी फितरत विच नहीं है, इह अंदर है।
साहिब गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज के मासूम लाडले नवाब सरहंद की कचहरी पेश हुए कि हूँ इतने बड़े बड़े इतिहास पढ़ने को तो पता चलता है सतारा बैठे सतारा ने फैसला करना है कि सतारा दे काजी भी है जवान सुचानंद भी है और नवाब मरेल कोटला भी छोटे छोटे जागीरदार भी बैठे हैं। नवाब सरहंद ने गल शुरू की थी सुचानंद से भी सुचानंद जी तुसी दसो इन्ना बच्चिया नाल की सलूक हो मथे से हथ मार के तीवड़िया पा के कहंदा है नवाब साहब सत के बच्चे सत ही होंगे ये वड्डे होके डंग मारन इन्हों का सिर होने कुचल गया। सुचानंद की सोचनी गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज के मासूम लाडलिया प्रति सपन परशियन कहते ने मार पश्तो भी मार कहते उस जमाने मुगल किधरे सिख ना या वेखन से कहते तेन मार राग ला मार नहीं रखते सप जा रहे वो सप आ रहे वो सिंह सिख नहीं कहते वो सप आ रहे वो सप जा रहे मार नहीं राग ला मार नहीं रखते सिख का ना ही मार। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने यह शब्द कबूल कर लिया प्रवान कर लिया असी सप दुष्ट लई जालम लई असी जहरीले नाग हाँ संत लई मजलूम लई असी अमृत की धार हाँ इस वास्ते सहम सतगुरु ने कबूल है जफरनामे मार चाहा सुध के तू बचगा कुछ ताचार के बाकी बमान दस्त पे सीधा मार की होया औरंगजेब जे तू मेरे चार बच्चे मार दिते अजे पे सीधा सप मौजूद है के बाकी बमान दस्त पे सीधा मार मार दे अर्थ ने सप सप मौजूद है कौन खालिक है मौजूद पंजाबी से अभी सप कह देने परचिन दे मार संस्कृत के कहने भुजंग ਅਹੁਦਾ ਲਕਬ ਅਸੀਂ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਲਈ ਸੱਪ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਲਈ ਸੱਪ ਅਸੀਂ ਜਦ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਨਾਂ ਰਖਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬੁਜੰਗੀ ਨੂੰ ਨਾਮ ਬਖਸ਼ੋ ਅਤੇ ਬੁਜੰਗੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸੱਪ ਦਾ ਬੱਚਾ ਉਲਕੀ ਬੁਜੰਗਣ ਨੂੰ ਨਾਮ ਬਖਸ਼ੋ ਵੀ ਸੱਪ ਦੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਨਾਮ ਬਖਸ਼ੋ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਹੈਰਾਨ ਤਾਂ ਹੋਵੇਗੀ ਦੁਨੀਆ ਭੁਜੰਗ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਭੁਜੰਗੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਭੁਜੰਗੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੱਪ ਦਾ ਬੱਚਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਿਆ ਦੁਸ਼ਟ ਲਈ ਜ਼ਾਲਮ ਲਈ ਦੋਖੀ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸੱਪ ਮਾਰਾਂਗੇ ਡੰਗ ਲਾਜ਼ਮੀ ਮਾਰਾਂਗੇ ਆਸੀਨ ਦਿਨ ਪਰ ਮਜ਼ਲੂਮ ਲਈ ਗਰੀਬ ਲਈ ਬੇਸਹਾਰਾ ਲਈ ਯਤੀਮ ਲਈ ਦੇਵਾ ਲਈ ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਆਦਿ ਕਾਲ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਦਾ ਇਹ ਕਿਰਦਾਰ ਰਿਹਾ ਇਹ ਮਜ਼ਲੂਮ ਲਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਿਹਾ ਇਹ ਦੁਸ਼ਟ ਲਈ ਜ਼ਹਿਰ ਹੈ ਮੈਂ ਕਰੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਅੰਦਰ ਹਿੰਦੂ ਅੰਨਾ ਸੁਚਾਨੰਦ ਕਹਿੰਦਾ ਨਵਾਬ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਸੱਪ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਇਹ ਵੱਡੇ ਹੋ ਕੇ ਡੰਗ ਮਾਰਨ ਹੁਣੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਰ ਕੁਚਲ ਦੋ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਖਤ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਦੂਜੇ ਨੇ ਤੀਜੇ ਨੇ ਚੌਥੇ ਨੇ ਪ੍ਰੋੜਤਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੁਚਾਨੰਦ ਨੇ ਸੱਤਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਬੈਠਾ ਨਵਾਬ ਆਹ ਦਾ ਨਾਰਾ ਭਰ ਗਿਆ ਬਾਕੀਆਂ ਨੇ ਯਕੇ ਬਾਦੀ ਗਿਰੇ ਉਹੀ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਸੱਤ ਦੇ ਬੱਚੇ ਲੇਕਿਨ ਨਵਾਬ ਮਲੇਰ ਕੋਟਲਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ ਦੀਵਾਨ ਸੁਚਾਨੰਦ ਹਿੰਦੂ ਹੈ
ಗಂಗು ಎಂದು ಚಂದು ಎಂದು ಬಾಯಿ ಧಾರದ ರಾಜೆ ಜಿನ್ನೇ ಪುಲಕೇವಿ ಕದಿ ಗುರು ಗೋಬಿಂದ್ ಸಿಂಗ್ ಜಿ ಮಹಾರಾಜ್ ನೂ ಚೈನ್ ನಾಲ್ ನೀ ಬೈಠಣ ದಿತ್ತಾ ಎಂದು ಇದ್ರೆ ಏನ ಸೋಚ ಲೈನಕ್ಕು ತನ್ನ ದಿಲ್ಲಿ ದಿ ಗಲ್ ಪ್ಯಾ ಕರ್ದ ಕಥ ಇಲ್ಲ ಅಜ ತಕ್ ಪಾಠ ಕರ್ದೇನ ಕರ್ದೇನ ಸಮಯದ ಇಸ್ ಪಂಕ್ತಿ ನಾಲ್ ಬೇನ ಸಾಫಿ ಅಸೀ ಕೀತೀ ಹೈ ಹಿಂದೂ ಅನ್ನ ತುರ್ಕು ಗಾನಾ ಕಮ್ ಸೆ ಕಮ್ ಹಿಂದೂ ದಿ ಜ್ಞಾನಿಯತ್ ಸೇ ಅಸೀ ಸಮಝ ಲೈಂದೇ ಗುರ್ಬಾಣೀ ದಿ ರೋಶನೀ ನೀ ಸಮಝ ಇಸ್ ಪಂಕ್ತಿ ನೂ ನಜ಼ರ ಅಂದಾಜ್ ಕೀತಾ ಇಸ್ ಪಂಕ್ತಿ ನೂ ಇಸ್ ಪಾಸೇ ಛೋಡ ದೇತಾ ಔರ್ ಅಂಜಾಮ್ ಸಾಡೇ ಸಾಮ್ನೇ ಹಿಂದೂ ಅನ್ನ ಇಸ್ ಚಾಯಿ ನೂ ನೀ ದೇಖ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ನೀ ದೇಖ ಅಂಧೇ ಕಾ ಅಂಧ ਸੌ ਅੰਧਿਆਂ ਕੋਲ ਲਾਠੀ ਹੋਵੇ ਇੱਕ ਸੁਜਾਖਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਕਨਾ ਚੂਰ ਕਰ ਹੀ ਦੇਣਾ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਅੰਧਿਆਂ ਦੀ ਹੈ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਅੰਧਿਆਂ ਅੰਧੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅੰਧੇ ਹੀ ਵੋਟ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅੰਧਿਆਂ ਨੇ ਅੰਧਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਉਣੇ ਨਾ ਕਿਸ ਨੂੰ ਪਾਉਣੇ

काल परपंच उदर निज पोख्यो पशु के न्यायी सोयो राम भजन की गत नहीं जानी माया हाथ बिकाना उर्ज रहो देखियन संग बौरा

नाचेत्यो गोविंद वृथा और स्थिरानी करो नानक हर बिरज पछानो भूले सदा प्राणी रहो अचेत नाचेत्यो गोविंद बेथा औद सिरानी।

इतना चेत्य गोविंद बिरथा और प्राणी उम्र ने बीत जाना स्वास्था की गिनती ने मुक जाना किसी के हाथ में कोई गल नहीं समझ भी नहीं कि कदों ने चले जाना इसलिए आओ हम प्यार नाल गुरु तेग बहादुर साहब महाराज प्यारे सतगुरु का उपदेश सुनिया हम उन्होंने ही अपना अपनी टोकरी बोली जो जहाँ बोल सकते हैं बोलियो जे मैं भी थक गया बोलता बोलता सा दिल्ली चार ही जन महीने च पता करना थोड़े प्यार के बस जाके मैं लगातार मैं बहुत थक गया मैं स्ट्रेस नहीं कर सकता पर वो ले जानते हो गए मैं अस्सी को बाबा तिरासी साल तैयारी जा रही है थक बहुत गया है पर स्वीकार करो मेरी सेवा मैं एक ही चाहना कि भाई रे राम करो चलाए।

चाल संग ना चाले तिन स्यों वीत जो गहराए से ही नीत ऐसे परम पुले संसारा जन्म पदार्थ से गवारा रहा।

तारा। वस्त्र पराई को उठ रोवे, कर्म तर्म सगलाई खोवे, हुक्म ना बूझे आवन जाने, पाप करे ता पछो ताने, जो सुध पावे सो परवान, तेरे पाने नो कुर्बान, नानक गरीब बंदा जन तेरा, राख ले साहिब प्रभ मेरा। तनासी मैला पंजवा, मोह मस्कीन प्रभ नाम आधार, खाटन को हर हर रोजगार, संचन को हर एको नाम, हलत पलत ताके आवे काम, नाम रते प्रभ रंग अपार, साध गावे गुण एक निरंकार रहाओ, साध की शोभा अतमस्कीनी, संत वडाई हर जस्कीनी, अनद संतन के भगत गोविंद, सुख संतन के दिन सी चिंद, जह साध संतन होवे इकत्र, तह हर जस गावे नाद कवित, साध सभा में अनद विश्राम, उन संग सो पाए जिस मस्तक क्राम, दे कर जोड़ करी अरदास, चरण पखार कहां गुण पास, प्रभ दयाल कृपाल हजूर, नानक जीवे संतां दूर। तनासरी मैला पंजवा, सो कट डरे जे खत्म समारे, डर डर पचे मन मुख विचारे, रहाओ सिर ऊपर माप पिता गुरुदेव, सफल मूरत जाकी निर्मल सेव, एक निरंजन जाकी रास, मिल साध संगत होत परगास, जीवन का दाता पूरन सब ठाए, कोट कलेश मिटे हर नाए, जन्म मरण सगला दुख नासे, गुरमुख जाके मन तन बासे, जिसनो आप लए लड़ लाए, दरगह मिले तिसे ही जाए, सही भगत जे साचे भाणे, जम काल ते पए निकाणे, साचा साहिब सच दरबार, कीमत कौन कहे विचार, कट कट अंतर सगल आधार, नानक जाचे

कर बाहर तेरा दरवासा, तू जन कहे संग कर कृपा प्रीतम प्रभ अपने, नाम जपो हर रंग जन को प्रभ अपने का तान, जो तू करे करावे स्वामी सामसलत परवान रहाओ। पत परमेश्वर गत नारायण तन गोपाल गुण साखी, चरण शरण नानक दास हर हर संति ए विद जाति। तनाश्री मैला पंजवा सगल मनोरथ प्रभ के पाए, कंठ लाए गुरु राखे संसार सागर।

की शोभा अनुज सदा उलास रहाओ। चरण शरण पूरन परमेश्वर अंतर जामी साख्यो जान बूझ अपना कियो नानक भगतन का अंकर राख्यो। त्रासरी मैला पंजवा जय जय देखो तै हजूर दूर कथो न जाई रव रया सरबत।

तुमरे दुखी हर आप निवारे, अपदा पई बतीत रहाओ। प्रगट कीने प्रभ करने हारे, नासन पाजन थाके, कर मंगल वाजे नित वाजे, अपने खसम निवाजे। अस्थिर रहो डोलो मत कभू, गुर के बचन आधार, जय जयकार सगल तू मंडल, मुख उजल दरबार। जिनके जीत नहीं फेरे, आपे पया सहाई।

सतगुरु प्रसाद। सुनो संत प्यारे बिनो हमारे जियो, हर दिन मुक्त न काहू जियो रहाओ। मन निर्मल कर्म कर तारन तरन हर, अवर जंजाल तेरे काहू ना काम जियो। जीवन देवा पार ब्रह्म सेवा, के उपदेश मोको गुरु दीना जियो। तिस क्यों ना लाया ही ते जा को किछ ना ही बीत। संत की बार ओ संग न चाले, मन पर तू आराध हर के प्रीतम साथ। जा के संग तेरे बंधन छूटे, गौ पार ब्रह्म शरण हृदय कमल चरण अवर आस कछ।

रे तलो हर मंगना, देखो पसार नैन सुनो साधु के बैन, प्राण पत चित राख सगल है मरना रहाओ। चंदन चोआ रस भोग करत अनेक बिख्या विकार, देख सगल है सी के एक है गोविंद को नाम नीको, कहत है साध जन तन तन आपन सा प्यो, हर जपना निमक जा प्यो, अर्थ दर्ब देख कछ संग नाही चलना। जा को रे कर्म पला तिन ओट गही संत।

नानक मन लगना तनासरी मैला पंजवा कर सतवा इको ओंकार सतगुर प्रसाद हर एक सिमर एक सिमर एक सिमर प्यारे कल कलेश लोभ मोह मां पैदल तारे रहाओ सास सास निमक निमक दिन से रहन चितारे साध संग जपन संग मन निधान धारे चरण कमल नमस्कार गुण गोविंद बिचारे साध जना की रेन नानक मंगल सुख सदारे तनासरी मैला पंजवा कर अठवा दो पदे इको ओंकार सतगुरु प्रसाद सिमरो सिमर सिमर सुख पाओ सास सास संभाले ए लोक परलोक संग सहाई जत तत मोए रखवाले गुरु का बचन

कौतुक मात दूध जैसे बाले सागर में बोत पायो हर नानक करी कृपा कृपाले तनाश्री मैला पंजवा पय कृपाल दयाल गोविंदा अमृत हृदय सिंचाई नव निध सिद्ध हर लाग रही जन पाई संतन को अनग सगल ही जाए गृह बाहर ठाकुर भगतन का रव रहा सर्व ठाई राव ताको कोई न पहुंचन हारा।

पूरा आत्म जिने सगल वस्ता कै जाका सतगुरु पूरा। ठाकुर गाये आत्म रंग सरणी पावन नाम से आवन सहज समावन संग रहाओ। जन के चरण वसे मेरे ही रे संग पुनीता देही जन की तूर देहो कृपा निद नानक कै सुखे ही। त्रासरी मैला पंजवा जतन करे मानुख डहकावे तो अंतर जामी जाने पाप करे कर मुकर पावे पेख करे निर्वाने। जानक दूर तुम्हें प्रभ नेर उत ताके उतते उतते खै आवे लोभी फेर रहाओ। जब लग तुटे नाही मन कर्मा तब लग मुक्त न कोई कहो नानक दयाल स्वामी संत भगत जन सोई। त्रासरी मैला पंजवा नाम गुरदियो है अपने जाके मस्तक कर्मा नाम दृढ़ावे नाम जपावे ताका जुग में तरमा। जन को नाम वडाई सोब नामो गत नामो पत जन की माने जो जो होग रहाओ। नाम तन जिस जन के पाले सोई पूरा शाह नाम व्योहारा नानक आधारा नाम परापत लाहा। तनाश्री मैला पंजवा नेत्र पुनीत पय दर्श देखे माथे परों रवाल रस रस गुण गावो ठाकुर के मोरे हृदय बको गोपाल। तुम तो राखनहार दयाल सुंदर सुगर बेअंत पिता प्रभ हो प्रभु के पाल रहाओ। महा आनंद मंगल रूप तुमरे बचन अनूप रसाल हृदय चरण शब्द सतगुरु को नानक बांध्यो पाल। तनासरी मैला पंजवा अपनी उकत खिलावे पोजन अपनी उकत खिलावे सर्व सुख भोग

रहाओ। नीच साजन सर्व गुण नायक सदा सलामत देवा, ईत ऊत जत तत तत तुम ही मिले नानक संत सेवा। तनाश्री मैला पंजवा संत कृपाल दयाल दमोदर, काम क्रोध दिख जा रे राज माल जोबन तन जियरा, इन ऊपर ले बारे मन तन राम नाम हितकारे, सुख सहज आनंद मंगल सहत पवनिज पारे तारे। रहाओ तन सो थान तन ओ पवना, जा मैं संत बसारे, जन नानक की श्रद्धा पूरो ठाकुर भगत तेरे नमस्कार। तनाश्री मैला पंजवा छदाए लियो महाबली ते अपने चरण परात, एक नाम दियो मन मनता बिनस ना कतहू जात, सतगुर पूरे की नींदात हर हर नाम दियो कीर्तन को तई हमारी गात। रहाओ अंगीकार कियो प्रभ अपने भगतन की राखी तात, नानक चरण गहे प्रभ अपने सुख पायो दिन रात। तनाश्री मैला पंजवा पर हरना लोभ झूठ निंद इन्हीं करक गुदारी, मृग तृष्णा आस मिथ्या मीठी के टेक मने सवारी, साकत की आवरदा जाए बिरसारी, जैसे कागज के पार मूसा तूक गवावत काम नहीं गावारी। रहाओ कर कृपा पार ब्रह्म स्वामी ए बंधन छुटकारी, बूढ़त अंध नानक प्रभ कादत साध जना संगारी। तनाश्री मैला पंजवा सिमर सिमर स्वामी प्रभ अपना, शीतल तन मन छाती रूप रंग सुख तन जी का, पार ब्रह्म मोरे जाती। रसना राम रसायन माती, रंग रंगी राम अपने कह चरण कमल निज साथी। रहाओ जिसका साथ नहीं रख लिया पूरन प्रभ की पांति, मेल लियो आपे सुखदाते नानक हर राखी।

भूत दुश्मन सब तुझते निवर प्रगट प्रताप तुम्हारा जो जो तेरे भगत दुखाए वो तत्काल तुम्हारा निरख तुमरी और हर नीत मुरार सहाय हो दास को कर गए उदरो मीत रहाओ सुनी बेनती ठाकुर मेरे खसमाना करे आप नानक आनंद भय दुख पागे सदा सदा हर जाप धनात्री मैला पन्नवा चतुर दिशा की नो बल अपना श्री ऊपर कर तारे हो कृपा कटाक्ष अवलोकन कीनो दास का दुख विदारे हर जन राखे गुरु गोविंद कंठ लाए अवगुण सब मेटे दयाल पुरख बख्शा।

नानक दास मुख ते जो बोले इहां उहां सच होवे। तनासरी मैला पंजवा औखी कड़ी न देखन दे अपना बिरद संभाले हाथ दे राखे अपने को सास सास प्रताले। प्रभ क्यों लाग रहे हो मेरा चीत आद अंत प्रभ सदा सहाय तन हमारा मीत रहाओ मन विलास पय साहिब के अचरज देख बढ़ाई हर सिमर सिमर आनंद कर नानक प्रभ पूरन पैज रखाई। तनासरी मैला पंजवा जिसको बिसरे प्राण पतदाता सोई गनो अभागा चरण कमल जाका मन राग्यो हमें सरोवर पागा। तेरा जन राम नाम रंग जागा आलस चीज गया सब तन ते प्रीतम सुमन लागा रहा। जय जय ते खो ते नारायण सगल कटा में तागा नाम उदक पीवत जा।

राम राम सिमर सिमर स्वामी प्रभ अपना निकट ना आवे जाम मुक्त वैकुंठ साध की संगत जन पायो हर का ताम चरण कमल हर जन की थाती कोट सुख विश्राम गोविंद दमोदर सिमरो दिन रहन नानक सद कुर्बान तनासरी मैला पंजवा मांगो राम से एक दान सगल मनोरथ पूर्ण होवे सिमरो तुमरा नाम रहाओ चरण तुम्हारे हृदय वासे संतन का संग पावो शोक अगन में मन ना व्यापे आठ पैर गुण गावो स्वस्थ व्यवस्था हर की सेवा मधंत प्रभ जापन नानक रंग लगा परमेश्वर बाहुर जन्म न छापन तनासरी मैला पंजवा मांगो राम ते सब थोक मानक को जाचत श्रम पाई है प्रभ के सिमरन मोख रहाओ कोखे मुन जन सिमरत पुराना देव पुकारे कोख कृपा सिंध सेव सच पाई है दोवे सुहेले लोक आन अचार व्यवहार है जेते बिन हर सिमरन फोक नानक जन्म

मां संतोष होवे गुरबचनी, प्रभ स्यों लागे पूरन ध्यान रहाओ। महाकलोल बुझे माया के, कर कृपा मेरे दीन दयाल। अपना नाम दे जप जीवा, पूरन होए दास की काल। सर्व मनोरथ राज सुख रस, सद खुशियां कीर्तन जप नाम। जिस

रे निंदक टिकन न पावन मूले उड़ गए बेकार रहाओ जह जह देखो तह तह स्वामी कोई न पहुंचन हार जो जो करे अवज्ञा जन की हो गया पत्थर करन हार रखवाला हुआ जाता अंत न पारा वार नानक दास।

हर चरण शरण गोविंद दुख पंजना दास अपने को नाम देवो। दृष्ट प्रभ तारो कृपा कर तारो पूजा कह कूप से पार ले वो रहाओ। काम क्रोध कर अंध माया के बंद अनक देखा तन छाद पूरे। प्रभ बिना आन न राख न हारा नाम सिमरावो शरण सूरे। पतित उदाहरणा जी जंत तारणा वेद उचार नहीं अंत पायो। गुण है सुख सागरा ब्रह्म रत्नागरा भगत वचल नानक गायो। त्रासरी मैला पंजवा हलत सुख पलत सुख नित सुख सिमरो नाम गोविंद का सदा लीजै। मिटे कमाने पाप तिराने साध संगत मिल मुआ जीजै। रहाओ राज जोगन विश्रंत हर माया मां दुख एहो महांत कहे। आस प्यास रमन हर कीर्तन ए पदार्थ भागवंत लहे। शरण समरथ अकथ अगोचरा पतित उदाहरण नाम तेरा अंतर जामी।

वंदना हर वंदना गुण गावो गोपाल राय राव। वडे पाग पेटे गुरुदेवा कोट पराग मिटे हर सेवा। चरण कमल जाका मन रापे सोग अगन किस जन्म व्यापे। सागर तरिया साधु संगे निरपो नाम जपो हर रंगे। पारतन दोख किस पाप न फेड़े जम जंदार ना वे नेड़े। तृष्णा अगन प्रभ आप बुझाए नानक उदरे प्रभ शरणाए। त्रासरी मैला पंजवा तृप्त पई सच पोजन खाया। मन तन रसना नाम ते आया। जीवना हर जीवना जीवन हर जप साध संग रहा। अनेक प्रकारी वस्त्र उधाए अन दिन कीर्तन हर गुण गाए। हस्ती रथ अस असवारी हर का मार्ग हृदय निहारी। मन तन अंतर चरण ते आया हर सुख निदान नानक दास पाया। तनासरी मैला पंजवा गुर के चरण जी का निस्तारा। समुद्र सागर जिन किन में तारा रहाओ। कोई होआ कर्मरत कोई तीरथ नाया। दासी हर का नाम से आया। बंधन का तनहार स्वामी जन नानक सिमरै।

जाई सर्व निवासी सदा अलेपा तो ही संग समाई रहाओ पोत मद ज्यों बास बसत है मुकर माए जैसे छाई तैसे ही हर बसे निरंतर तट ही खोजो पाई बाहर पीतरे को जानो के गुरु ज्ञान बताई जन नानक बिन आपा चीन मिटे न परम की काई सनासरी मैला नामा साधो ए जग परम पुलाना राम नाम का सिमरन छोड़िया माया हाथ बिकाना रहाओ मात पिता पाई सुत बनता ताके रस लपटाना जो बन तन प्रभता के मद में एन सरे दीवाना दीन दयाल सदा दुख पंजन तास्यो मन न लगाना जन नानक कोटन में किन्हों गुरमुख हो पछाना तनाश्री मैला नावा तिन जोगी को जुगत ना जानो लोभ मोह माया ममता सुन जे कट माए पछानो रहाओ पर निंदा उस तक नह जाके कंचन लो समानो हर शोक ते रहे अतीता जोगी ताहे बखानो चंचल मन दह दिसको तावत अचल जाए ठहरानो कहो नानक ए बिद को जो नर मुक्त ताहे तुम मानो तनाश्री मैला नावा अब मैं कौन उपाय करो जे बिद मन को संसा चूके पौनिग पार करो रहाओ जन्म पाए कछ कलो न कीनो ताते अधिक डरो मन बच क्रम हर गुण नहीं गाए यह जी सोच डरो गुरमत सुन कछ ज्ञान न उपजो पस ज्यो उदर करो कहो नानक प्रभ बिरद पछानो तब हो पत करो तनाश्री महला पहला कर दूजा अष्टपदियां इको अंकार सतगुर प्रसाद गुर सागर रत्नी पर पूरे अमृत संत चुगे नहीं दूरे हर रस चोग चुगे प्रभु पावे सर्वर में हंस प्राण पत पावे क्या

दुविधा छोड़ पे निरंकारी मुक्त पदार्थ हर रस चाखे हावन जान रहे गुरु राखे सर्वर हंसा छोड़ न जाए प्रेम भगत कर सहज समाए सर्वर में हंस हंस में सागर अकथ कथा गुरु बचनी आदर सुन मंडल एक जोगी बैठे नारे ना पुरख कहो कहू कैसे त्रिभुवन जोत रहे लिवलाई सुर नारे नाथ के शरणाई आनंद मूल अनाथ आधारी गुरुमुख भगत सहज विचारी भगत वचल पै काचन हारे हो मैं मार मिले भगतारे अनेक जतन कर काल संताए मरण लिखाए मंडल में आए जन्म पदार्थ।

जत सत संजम हृदय समाए, चौथे पद को जे मन पति आए, साचे निर्मल मैल न लागे, गुर के शब्द परम पौ पागे, सूरत मूरत आद अनूप, नानक जाचे साच रूप, तनाश्री मैला पहला, सहज मिले मिलिया प्रमाण, ना कुमरण ना आवन जान, ठाकुर में दास दास में सोए, जह देखा तह अवर न कोए, गुरमुख भगत सहज कर पाये, बिन गुरु के ते मर आइए जाइए, रहाओ सो गुरु करो जे साच दृढ़ावे, अकथ कथावे शब्द मिलावे, हर के लोग अवर नहीं कारा, साचो ठाकुर साच प्यारा, तन में मनुआ मन में साचा, सो साचा मिल साचे राचा, सेवक प्रभ कह लागे पाए, सतगुरु पूरा मिले मिलाए, आप दिखावे आपे देखे, हथ ना पतीजे ना बहुते खे, कर पांडे जिन अमृत पाया, प्रेम भगत प्रभु मन पति आया, पड़ पड़ फूले चोटा खाए, बहुत सियान पावे जाए, नाम जपे पौ भोजन खाए, गुरमुख सेवक रहे समाए, पूज सिला तीर्थ बनवासा, परमत डोलत पे उदासा, मन मैले सूचा क्यों होए, साथ मिले पावे पत सोए, आचारा विचार शरीर, आज जुगाद सहज मन तीर, पल पंकज में कोट उदारे, कर कृपा गुर मेल प्यारे, किस आगे प्रभ तुझ सालाही, तुझ बिन दूजा मैं को नाही, ज्यो तुझ पावे त्यों राख रजाए, नानक सहज पाए गुण गाए, तनाश्री मैला पंजवा कर छेवा अष्टपदी एक ओंकार, सतगुरु प्रसाद, जो जो जूनी आयो तिन ते उर्जायो, मानस जन्म संजोग पाया, ताकि है ओट साध रास्तो, देकर हाथ कर कृपा मेलो हर राया, अनेक जन्म प्रमथित नहीं पाई, करो सेवा गुरु लागो चरण गोविंद जी का, मार्ग देहो जी बताई रहाओ, अनेक उपाव करो माया को, बचित्र करो मेरी मेरी करत सद ही विहावे, कोई ऐसे रे पेट है संत मेरी लाहे सगल चिंत, ठाकुर सुन मेरा रंग लावे, पड़े रे सगल देव न चूके मन पेद, एक खिन न तीरे मेरे करके पंचा, कोई ऐसे रे भगत जो माया ते रहत, एक अमृत नाम मेरे हृदय सिंचा, जे तेरे तीर्थ नाए अंग बुद मैल लाए, कर को ठाकुर एक तिलना माने, कद पावो साध संग हर हर सदा आनंद, ज्ञान अंजन मेरा मन स्नान, सगल आश्रम कीने मनुआ ने पतीने, विवेकहीन देही तोए, कोई पाये रे पुरख विदाता, पार ब्रह्म के रंग राता, मेरे मन की दुर्मत मल खोए, कर्म तर्म जुगता निमख ना हेत करता, गर्भ गर्भ पड़े कहीं ना लेखे, जिस पेटी है सफल मूर्त करे सदा तीरत, गुर प्रसाद को नेत्रों देखे, मन हट जो कमावे तिल ना लेखे पावे, बगल जो ध्यान लावे माया रे धारी, कोई ऐसो रे सुख दाई प्रभ की कथा सुनाई, तिस पेटे गत होए हमारी, सो प्रसन्न गोपाल राय काटे रे बंधन माए, गुर के शब्द मेरा मन राता, सदा सदा आनंद पेट्यो निरपय गोविंद, सुख नानक लादे हर चरण पराता, सफल सफल पई सफल जाते।

तीर्थ नामन जाओ, तीर्थ नाम है। तीर्थ शब्द विचार अंतर ज्ञान है। गुर ज्ञान साचा थान, तीर्थ दस पूर्व सवा दशाहरा। हौ नाम हर का सदा जाचो, देहो प्रभ तरणी तरा। संसार रोगी नाम दारू, मैल लागे सत बिना। गुरवाक निर्मल सदा चानन, नित साच तीर्थ मजना। साच ना लागे मैल क्या मल ढोइए, गुणे हार परोय किसको रोइए। विचार मारे तरे तारे, उल्ट जोन ना आवे। आप पारस परम त्यानी, साच साचे भावे। आनंद अनदिन हरख साचा, दुख किलविख पर हरे। सच नाम पाया गुरु दिखाया, मैल नाही सच मने। संगत मीत मिलाप पूरा नामनो, गावे गावन हार सब सुहावनो। साला है साचे मन सतगुरु पुन दान दया मते। तिर संग पावे सहज नावे, बेड़ी त संगम सत सते। आराध एकंकार साचा, नित दे चढ़े सवाया। गत संग मीता संत संगत, कर नदर मेल मिलाया। कहन कहे सब को एके वड आखी है, हौ मूर्ख नीच अजान समझा साखी है। सतगुर की साखी अमृत पाखी, चित मन मानिया मेरा। पूछ करे आवे दिखला दे, शब्द सचे गुर मेरा। आखन टोट न भगत पंडारी, परपुर रहे सोई। नानक साच कह बेनंती, मन मांजे सच सोई। तनासरी मेला पहला। जीवा तेरे नाए मन आनंद है जियो, साचो साचा नाव गुण गोविंद है जियो। गुर ज्ञान अपारा सृजनहारा, जिन सृजी तिन गोई। परवाना आया हुकुम पठाया, फिर न सच्चे कोई। आपे कर वेखे सिर सिर लेखे, आपे सुरत बुझाई। नानक साहिब अगम अगोचर, जीवा सच्ची नाई। तुम सर अवर न कोए, आया जाए सी जियो। हुक्मी होए निबेड़ परम चुकाए सी जियो। गुर परम चुकाए अकत सहाए, सच में साच समाना। आप उपाए आप समाए, हुक्मी हुक्म पछाना। सच्ची वड्याई गुर ते पाई, तू मन अंत सखाई। नानक साहिब अवर न दूजा, नाम तेरे वड्याई। तू सच्चा सृजनहार अलख सिरंदिया जियो। एक साहिब दो रहा वाद वदंदिया जियो। दो रहा चलाए हुक्म सबाए, जन्म हुआ संसारा। नाम बिना नाही को बेली, बिखला दी सिर पारा। हुक्मी आया हुक्म ना बूझे, हुक्म सवारन हारा। नानक साहिब सब सिंजापे, साचा सृजनहारा। भगत सो है दरबार सब सुहाया जियो। बोले अमृत बाण रसन रसाया जियो। रसन रसाए नाम तिसाए, गुर के शब्द विकाने। पारस परसे पारस होए, जा तेरे मन पाने। अमरा पद पाया आप गवाया, विरला ज्ञान विचारी। नानक भगत सोहंदर साचे, साचे के व्यापारी। पूछ प्यासो आज क्यों डर जाए सा जियो। सतगुरु पूछो जाए नाम ते आए सा जियो। सच नाम ते आए साच चवाए, गुरमुख साच पछाणा। दीना नाथ दयाल निरंजन, अंदिन नाम वखाना। करनी कार तुरों फुरमाई, आप मुआ मन मारी। नानक नाम महारस मीठा, कृष्णा नाम निवारी। तनासी चंत मैला पहला। तिर संग मूठड़ी खबर न पाया जियो। मस्तक लिखेड़ा लेख पूर्व कमाया जियो। लेख न मिटे पूर्व कमाया, क्या जाना क्या होती। गुणी अचार नहीं रंग राती, हम गुण बै बैरोसी। तन जो बन आख की छाया, बिरद पै दिन पुन्या। नानक नाम बिना दोहागण, छूटी झूठ विछुनिया। बूढ़ी कर का लो गुर कह पाए चलो।
साचा नाम के आए पावे सुख महलो, हर नाम के आए ता सुख पाए, तेयड़े दिन चारे लिज कर जाए बह सच पाए, अंदिन नाल प्यारे बिन पगती कर वास न होवे, सुनियो लोक सभाए नानक सरसी ता फिर पाए, राती साचे ना।

रहनी। गुर शब्द ना माने साई साथी सा तन मेल न पाए, नानक आपे आप पछाणे गुरमुख सहज समाए। तन सुहागन नार जिन फिर जानिया जियो, नाम बिना कूड़ियार कूड़ कमाणिया जियो। हर भगत सुहावी साचे भावी, पाए भगत प्रभ राती। तिर रलिया ला जो बन बाला, तिस रावे रंग राती।

हरे तना श्री संत महला चौथा कर पहला इको अंकार सतगुरु प्रसाद हर जियो कृपा करे ता नाम ते आई है जियो सतगुरु मिले सुभाए सहज गुण।

तिसरै जियो कदे ना विसारी अंदिन समारी जा नाम लई ता जीवा श्रवणी सुनी ता ए मन तृप्तै गुरमुख अमृत पीवा नदर करे ता सतगुर मेले अंदिन विवेक बुद्ध बिचरै अंदर साचा नेहो पूरे सतगुरै सत्संगत मिले वड़ पाग ता हर रस आवे जियो अंदिन रह लिव लाए ता सहज समावे जियो सहज समावे ता हर मन भावे सदा अतीत बैरागी हलत पलत सोबा जग अंतर राम नाम लिव लागी हरख सो दोहा ते मुक्ता जो प्रभ करे सो भावे सत्संगत मिले वड पाग ता हर रस आवे जियो दूजे पाए दुख होए मन मुख जम जोया जियो हाय हाय करे दिन रात माया दुख मोया जियो माया दुख मोया हों मैं रोया मेरी मेरी करत विहावे जो प्रभ दे तिस चेत नाही अंत गया पछतावे बिन नामे को साथ ना चाले पुत्र कलत्र माया तोया दूजे पाए दुख होए मन मुख जम जोया जियो कर कृपा लो मिलाए महल हर पाया जियो सदा रहे कर जोड़ प्रभ मन पाया जियो प्रभ मन पावे ता हुक्म समावे हुक्म मन सुख पाया अंदिन जपत रहे दिन राती सहजे नाम ते आया नामो नाम मिली वडिया।

सतगुर दीन दयाल जिस संग हर गावे जीव अमृत हर का नाम साध संग रावे जीव पज संग साधु इक अराधु जन्म मरण दुख नासे तुर कर्म लिखिया साथ सिखिया कट्टी जम की फासे तै परम नाथे छुटी गाठे जम पंथ मूल नावी है दिनवंत नानक तार किरपा सदा हर गुण गावी है नितरिया पर एक नाम निरंजनो जियो तू दाता दातार सर्व दुख पंजनो जियो दुख हर्त करता सुखे स्वामी शरण साधु आया संसार सागर महा बिखड़ा पल एक माहे तराया पूर रहा सर्व ताई गुर ज्ञान नेत्री अंजनो दिनवंत नानक सदा सिमरी सर्व दुख तय पंजनो आप लिए लड़ लाए कृपा तारिया जियो मोहे निर्गुण नीच अनाथ प्रभ अगम अतारिया जियो दयाल सदा कृपाल स्वामी नीच था पनहारिया जी जंत सब वस्ते रह सगल तेरी सारिया आप करता आप पुगता आप सगल बिचारिया बिनवंत नानक गुण गाए जीवा हर जप जपो बनवारिया तेरा दर्श अपार नाम अमोल जियो।

प्रीतम कोल नहीं। दुनिया दे सारे सुख आराम इकट्ठे कर लिए, गुरु ने एक दृश्य रचिया है। कहंदे ने बारिश पे चढ़ी लग जाए, जिन्ने तालाब ने पानी दे भर जान, ठंडी शीतल रुमकमी हवा चल रही होवे, पवन दा वेग होवे, ते सोने दे पावे जड़त पलंग होन, जल थल नीर भरे, शीतल पवन झुलारे दे, खेजड़िया सोएन हीरे लाल जड़ंदिया, सौन दिया सेजा सोने दिया हो, हीरे लालां दी उस विच जड़त होवे। कहन लगे इत्थे ही बस नहीं, बस्तर सिंगार भी कीमती तो कीमती होन, शुभर कपड़ भोग, पर जे एना सामान इकट्ठा हो जाए प्रीतम ना आवे। मालिक दा मिलाप नसीब ना होवे, गुरु ने बाणी में आख्या कहन लगी।

required. Arrest it. कोई मुसाफर आ जांदा एक रमणीक ठिकाना वेख के जिथे पानी निर्मल जल का भरिया होया तालाब सी उस विच कमल फुल खिड़े सन डड्डा मछलियां तैर रही सन किनारे ते हरा हरा घास सी बिरछ बूटे सन अजे ही रमणीक का देख के मुसाफर रुक गया थोड़ी देर सा ले लवां इहो जे टिकाने कोई हर थावे थोड़ो मिलते ने जीवन विच ताजगी दे दिंदे ने इहो जे टिकाने रुक गया थकावट उतारी अगे तुर गया अर्ज की किसी कुछ दिन बाद वापस परत रहा कि फिर चेता आयो ख्याल आयो तो इससे मेरे राह विच कोई जीवन विच खेड़ा लियाने वाला ताजगी देने वाला

आदमी का तो भाव चंगा। कोई चंगा काम ना की पर चली गई, जब समा तो लंग गया, बाकी तीरा जाता पछतावा।

एक अरदास कि हे मालिक तेरे तो विछड़ के केवल तपत विच के रह गए, तेरे को टुट के तपत ने अग ने जला दिता है, अथाड़ तपंदा तिस लगे हर नह नह जिन्ना पास, तेरे को विछड़ के तपत दे घेरे आके जल गए। हुण एक अरदास है,

माया मोह परम पैले सतदारा स्यों पीत लगाई एक उत्तम पंथ सुने गुर संगत एह मिलंत

हम अवगुण परे एक गुण नाही, अमृत साढ़ माया मोह परम पै पुले सुतदा राशों प्रीत लगाई। एक उत्तम पंथ सुनियो गुर संगत ते मिलंत जम त्रास मिटाई। एक अरदास पाठ कीरत की गुरु रामदास राखो शरणाई। सो कहो टल गुर सेवियै अहनस सहज सुपाई।

जन्म मरण दुख जाए, होगा शिव सुख समी नूर अरसों कुरसों चटी है, तुद डिठे सचे पातशाह। माल जन्म जन्म भी कटी है, सज्जन सच्चा पातशाह सिर शहांद शाह। जिस पास बैठिया सोही है, सब नांदा बेसा। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी, राग सोरठ की वार, श्लोक महला तीजा। गिण नावै सब परम दे, नित जग तोटा संसार। मनमुख कर्म कमावणे, मैं अंध गुबार। विण नावै सब परम दे, नित जग तोटा संसार। मनमुख कर्म कमावणे, हो मैं अंध गुबार। गुरमुख अमृत पीवना, नानक शब्द विचार। महला तीजा। सहजे जागै सहजे सोवै, गुरमुख अन दिन उसत होवै। मनमुख परमै सहसा होवै, अंतर चिंता नींद न सोवै। ज्ञानी जागै सब सुभाए, नानक नाम रत्यां बल जाओ। पौड़ी से हर नाम त्यावहें जो हर रत्या, हर एक त्यावहें एक इको उत्पत्या। जो हर नाम त्यावहें तिन डर सट कत्या,

गुरमति देव आप गुरमुख हर जपया। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जीओ। जप जी साहिब इक ओंकार। सतनाम करता पुरख निरभउ निरवै अकाल मूरत अजूनी सैतन गुरप्रसाद। जप आद सच जुगाद सच है पी सच नानक हो सी पी सच। सोचै सोच न हो वई जे सोची लख वार। चुपै चुप न हो वई जे लाए रहा लिवतार। भुखिया भुख न उतरी जे बन्ना पुरियां पार। सहस सियाणप लख हो है तक न चलै नाल। किव सच्यारा होई है किव कूड़ा चुटै पाल। हुक्म रजाई चलना नानक लिखै नाल। हुक्मी होवन आकार हुक्म न कहया जाई। हुक्मी होवन जी हुक्म मिलै बड़ियाई। हुक्मी उत्तम नीच हुक्म लिख दुख सुख पाई है। एक न हुक्मी बख्शीस एक हुक्मी सदा पवाई है। हुक्म अंदर सब को बाहर हुक्म न कोई। नानक हुक्म जे बुझै ता हम मैं कह न कोई। गावै को ताण होवै किसे ताण। गावै को दात जाने निशान। गावै को गुण वड़ियाईयां चार। गावै को विद्या विकम विचार। गावै को साज करे तनखे। गावै को जी लै फिर दे। गावै को जापै दिस दूर। गावै को वेख हाजर हदूर। कथना कथी नावै तोट। कथ कथ कथी कोटी कोट कोट। देंदा दे लैंदे थक पाहे। जुगां जुगंतर खाही खाहे। हुक्मी हुक्म चलाए राह। नानक विगसै वे परवाह। साचा साहिब साच नाए पाख्या पाउ अपार। आखहे मंगह देह देंदा ते करे दातार। फेर के अगै रखिए जित दिस दरबार। मोह के बोलन बोलिए जित सुन करे प्यार। अमृत वेला सच ना ओं वड्याई विचार। करमी आवै कपड़ा नदरी मोख द्वार। नानक एवै जानिए सब आपे सचियार। आपिया न जाए गीता न होए। आपे आप निरंजन सोए। जिन सेव्या तिन पाया मान। नानक गावी है गुणी निदान। गावी है सुनिए मन रखिया पाऊ। दुख पर हर सुख कर लै जाई। गुरमुख नादम गुरमुख वेदम गुरमुख रहया सुमाई। गुर ईश्वर गुर गोरख ब्रह्मा गुर पार्वती माई। जे हो जाना आखा नाही कहना कथन ना जाई। गुरा एक देह बजाई सबना जिया का एक दाता। सो मैं विस्तर ना जाई। तीर्थ नावा जित सुभावा बिन भाणे के नाए करी। जेती सिरठो पाई वेखा बिन करमा के मिलै लई। मत विच रतन जवाहर माणिक जे एक गुर की सिख सुणी। गुरा एक देह बजाई सबना जिया का एक दाता। सो मैं विसर ना जाई। जे जुग चारे आर जा होर दे सोणी होए। नवा खंडा विच जाणीए नाल चलै सब कोए। चंगा ना उर खाई कह जस कीरत जग ले। जे तिस नदर न आवई ता बात न पुछ के। कीटा अंदर कीट कर दोषी दोष तरे। नानक निर्गुण गुण करी गुणवंतया गुण दे। तेहा कोई न सुजई जे तिस गुण कोई करे। सुनया ऐ सद पीर सुरनाथ। सुनया धरत तबल आकाश। सुनया दीप लो पाताल। सुनया पोह न सकै काल। नानक भगतां सदा विगास। सुनया दुख पाप का नाश। सुनया ईश्वर ब्रह्मा अंद। सुनया मुख साला हनुमंद। सुनया जोग जुगत तन भेद। सुनया शास्त्र सिमरत वेद। नानक भगतां सदा विगास। सुनया दुख पाप का नाश। सुनया सतसंतोष ज्ञान। सुनया अठ सठ का इशनान। सुनया पढ़ पढ़ पावै मान। सुनया लागै सहज ध्यान। नानक भगतां सदा विगास। सुनया दुख पाप का नाश।
ਸੁਣਿਆ ਸਰਾ ਗੁਣਾ ਕੇ ਗਾਲ, ਸੁਣਿਆ ਸੇਖ ਬੀਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਸੁਣਿਆ ਅੰਧੇ ਪਾਵੇ ਰਾਹ, ਸੁਣਿਆ ਹਾਥੋ ਵੈ ਸਗਾ, ਨਾਨਕ ਭਗਤਾਂ ਸਦਾ ਵਿਗਾਸ, ਸੁਣਿਆ ਦੁੱਖ ਪਾਪ ਕਾ ਨਾਸ਼, ਮੰਨੇ ਕੀ ਗਤ ਕਹੀ ਨਾ ਜਾਏ, ਜੇ ਕੋ ਕਹੈ ਪਿਛੈ ਪਛਤਾਏ, ਕਾਗਦ ਕਲਮ ਨਾ ਲਿਖਣ ਹਾਰ, ਮੰਨੇ ਕਾਵੇ ਕਰਨ ਵਿਚਾਰ, ਐਸਾ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਹੋਏ, ਜੇ ਕੋ ਮਨ ਜਾਣੇ ਮਨ ਕੋਏ, ਮੰਨੈ ਸੁਰਤੋ ਵੈ ਮਨ ਬੁੱਧ, ਮੰਨੈ ਸਗਲ ਪਵਣ ਕੀ ਸੁਧ, ਮੰਨੈ ਮੂੰਹ ਚੋਟਾ ਨਾ ਖਾਈ, ਮੰਨੈ ਜਮ ਕੈ ਸਾਥ ਨਾ ਜਾਈ, ਐਸਾ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਹੋਏ, ਜੇ ਕੋ ਮਨ ਜਾਣੇ ਮਨ ਕੋਏ, ਮੰਨੈ ਮਾਰਗ ਠਾਕ ਨਾ ਪਾਏ, ਮੰਨੈ ਪਤ ਸਿਉਂ ਪ੍ਰਗਟ ਜਾਏ, ਮੰਨੈ ਮਗ ਨਾ ਚੱਲੈ ਪੰਥ, ਮੰਨੈ ਧਰਮ ਸਿਧੀ ਸੰਬੰਧ, ਐਸਾ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਹੋਏ, ਜੇ ਕੋ ਮਨ ਜਾਣੇ ਮਨ ਕੋਏ।

गाव नौं जति सति संतोखी गावे वीर करारी गावन पंडित बण रखी सर जुग जुग विद्या नाले गावे मोहनिया मन मोहन सुरगा मछ पयाले गावन रतन उपाय तेरे आठ सठ तीर्थ नाले गावे जोध महाबल सूरा गावे खानी चारी गावे खंड मंडल वर पंडा कर कर रखे तारे सही तुद न गावे जो तुद पावन रते तेरे भगत रसाले होर केते गावन से मैं चितन आवन नानक क्या विचारे सोई सोई सदा सच साहेब साचा साची नाई है पी होसी जाए ना जासी रचना जिन रचाई रंगी रंगी पाती कर कर जिन सीमा है जिन पाई कर कर वेखै किता अपना जिव तिस दी वड्याई जो तिस भावै सोई करसी हुक्म न करना जाई सो पातशाह शाह बद साहिब नानक रहन रजाई मुंदा संतोख शर्म बद जोड़ी ध्यान की करें बेपूत खिंथा काल कुआरी काया जुगत डंडा प्रतीत आई पंथी सगल जमाती मन जीत जग जीत आदेश आदेश आद नील अनाद अनाथ जुग जुग एक वेश भुगत ज्ञान दया भंडारण खट खट बजे नाद आप नाथ नाथी सब जाकीर दिस देवरा साध संजोग बिजोग द्विकार चलावें लिखे आवे पाग आदेश दस आदेश आद अनिल अनाद अनाहत जुग जुग एक वेश एका माई जुगत व्याई तिन चले प्रवाण एक संसारी एक भंडारी एक लाई दीवान जिब दस पावै तिवै चलावै जिब होवै फुरमान ओह वेखै उन्हां नजर न आवै बहुता हे वडाण आदेश तिस आदेश आद अनिल अनाद अनाथ जुग जुग एक वेश आसन लोए लोए भंडार जो किछ पाया सो एका वार कर कर वेखै सरजनहार नानक सचे की साची कार आदेश तिस आदेश आद अनिल अनाद अनाथ जुग जुग एक वेश एक दूजी पौ लख हो है लख हो है लख वीस लख लख गिड़ा खिया है एक नाम जगदीश एतरा पत बबड़िया चढ़िया हुई कीस सुन गलाया काज की गीताया रीस नानक नदरी पाई है कूड़ी कूड़ा ठीस आखण जोर जपन है जोर जोर न मंगण देण न जोर जोर न जीवन मरण न जोर जोर न राज माल मनसोर जोर न सुरती ज्ञान विचार जोर न जगती छुट्टे संसार जिस हाथ जोर कर वेखै सोए नानक उत्तम नीच न कोए राती रुती थिती वार पवन पानी अग्नि पाताल तिस विच धरती थाप रखी धर्मशाल तिस विच जी जुगत के रंग तिनके नाम अनेक अनंत करमी करमी होए विचार सचा आप सचा दरबार तथा सोहन पंच प्रवान नदरी करम पवै निशान कच पकाई उथै पाई नानक गया जापै जाए धर्म खंड का एहो धर्म ज्ञान खंड का खो कर्म केते पवन पाणी बह संतर केते कान महेश केते बरमे घाट कड़ी है रूप रंग के वेश केतियां कर्म भूमि मेर केते केते तू उपदेश केते अंध चंद सूर केते केते मंडल देश केते सिद्ध बुद्धनाथ केते केते देवी वेश केते देवदान मुन केते केते रतन समुंद केतियां खाणी केतियां बाणी केते पात नरिंद केतियां सुरती सेवक केते नानक अंत न अंत ज्ञान खंड मैं ज्ञान प्रचंड तिथे नाद विनोद कोड आनंद शर्म खंड की बाणी रूप तिथे घाट घड़ी है बहुत अनूप ताकियां गल्लां कथियां न जाए जे को कह पिछे पछताए तिथे घड़ी सुरत मत मन बुद्ध तिथे घड़ी सुरस दंग की सुध कर्मखंड की बाणी जोर तिथे होर न कोई होर तिथे जोध महाबल सूर तिन मह राम रहया भरपूर तिथे ऐसी तो सीता मैं मामा ही ताके रूप न कथने जाए ना ओह मरे न ठग जाए जिन कह राम बसे मन माहे तिथे भगत वसै कह लो करे आनंद सचा मन सोए सच खंड वसै निरंकार कर कर वेखै नजर निहाल
तथा खंड मंडल पर पांड जे को कथा दंत नंत तथा लो लो आकार जब जिम हुकम तिव तिवकार विख विघस कर विचार नानक कथन करड़ा सार। जत पहारा तीर जसन यार अहरण मत भी हथियार पाओ खला गंतपताओ पांडा पाओ अमृत तित टाल घड़िया शब्द सची टकसाल जिनको नजर करम तनकार नानक नजरी नजर निहाल। श्लोक पवन गुरु पाणी पिता माता दर्त महात दिवस रात दुय दाई दाया अखिल सगल जागत चंगे आईया बुरे आईया वाचे धर्म हदूर करमी आपो अपनी के नेड़े के दूर

सर्वं कर्मं सर्वं धर्मं सर्वं युक्ता सर्वं मुक्ता रसावल शांतता प्रसाद नमो नरक नाशेषदा रंग प्रकाशे नंगंग स्वरूपे बंगंग विभूते परमाथंग परमाथे सदा सर्वसाथे गा स्वरूपे निर्वाद विभूते अनंगी नामे दुर्मंगी दुर्गामे ए नरपंगी स्वरूपे सर्वंगी अनुपे न सूत्र न मित्र नाता न माता न जाता ने बाता ने साग नरी गाय नरसागंग श्रीका में तम ही कहें सदैव प्रवाह जय जय भगवती शांत प्रसाद फिर जहाँ जूर है कि आज रह जूर है हमेशा सलाम है सुनासल कलाम है कि साहब तुम आ गए कि उसने जरा गए कि कामल करीम है कि राज करीम है कि रोजी दहन दें कि राज ग्रहण दें करीमल कमाल है कि उसने जमाल है कि नीमल खराज है करीमल नवाज है हरीफुल शिकन है रासल पकान है कलंकंग प्रणाश है समातुल निवास है गंजल गुनी मैर जाय करीम है समातुल जमा है कि साहेब करा है कि नरकंग प्रणाश है बहस तुल निवास है कलंकंग प्रणाश है समातुल निवास है गंजल गुनी मैर जाय करीम है समातुल जमा है कि साहेब करा है कि नरकंग प्रणाश है बहस तुल निवास है

जमीन उल जमा है, मीकल जमा है, ग्रीमल कमाल है, गजरो जमाल है, गजरंग प्रकाश है, कि मैं तो सुभाष है, कि अज विसरूप है, कि मैं तो भूत है, कि मैं तो बसा है, कि आत्म प्रभा है, गजरंग नांग है, कि मैं तो भंग है, मद पार छंद दव प्रसाद मुन मन प्रणाम गुण गण मधाम हर भर गांज हर नर पर पांच अनगण प्रणाम मुन मन सलाम हर नर खांड भर नर मांडू गण पवनाश मुन मन प्रकाश गुणगान प्रणाम जल थर्म धाम अंश जे अंग आसन पांग उपमा पार गात मित उदार जल थल मांड देश विश व पांड जल थल महंत देश विश बेअंत आजान बाह कैसदाह अहंकार आदि कथनीय नाद खलखंड ख्याल गुरुवर काल कर कर प्रणाम जय जरन नाम अंश जी गात जज न बाद अंठ भंडार अंठ पा

करुणा लय है, अर्घालय है, खल खंडन है, मह मंडन है, जगदीश्वर है, परमेश्वर है, कल कारण है, सर्ववारण है, त्रत के धरण है, जग के करण है, मन मान्य है, जग जान्य है, सर्वं पर है, सर्वं कर है, सर्वभाष्य है, सर्वनाश्य है, करुणा कर है, विश्वं पर है, सर्वेश्वर है, जगदेश्वर है, ब्रह्मांड से है, खलखंड से है, बरदे पर है, करुणा कर है, जप जप है, सप सप है, अकृता कृत है, अमृत अमृत है, अमृत अमृत है, करुणा कृत है, अकृता कृत है, धरणी रत है, अमृतेश्वर है, परमेश्वर है, अकृता कृत है, अमृत अमृत है, अजबा कृत है, अमृत अमृत है, निर्नायक है, खलकायिक है, विश्वम पर है, करुणा लिया है, निरपनायिक है, सर्वायिक है, बहुभंजन है, अर्गंजन है, हरिपदापन है, जप जापन है, अकलंकृत है, सर्वाकृत है, कर्ता कर है, हरदार है, परमात्मा है, सर्वात्मा है, आत्मवास है, जस के जस है, भुजंग प्रयात छंद, नमो सूर्य सूर्य, नमो चंद्र चंद्रे, नमो राज राज्य, नमो इंद्र इंद्रे, नमो अंधकारी, नमो तेज तेजे, नमो वृंद वृंदे, नमो बीज बीजे, नमो राज सिंह दाम सिंह शांत रूपे, नमो परम सतंग सतंग स्वरूपे, नमो योग योगे, नमो भोग भोगे, नमो सर्वजाले, नमो सर्वपाले, नमो सर्वपाले,

आयो कूर करया और जो सभी जाग श्री भगवान को भेद ना पायो। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जीओ पातशाह दसवीं कव्यवाच बेनती जाओ पई हमरी करो हाथ दे रक्षा पूर्ण होए जित की इच्छा तब चरणन मन रहे हमारा अपना जान गुरु प्रत पारा हमरे दोष्ट सब तुम कहो आप हाथ दे मुहे बचाव हो सुखी वसै मोर परिवार सेवक सिख सब करतार मोर रक्षा निज कर दे करे सब बैरन का आज संगरे पूर्ण होए हमारी आसा तोर भजन की रह प्यासा तुम्हें शाड कोई अबर न त्याऊं जो बर जाऊं सो तुम ते पाऊं सेवक सिख हमारे तारी है जन जन सत्र हमारे मारी है आप हाथ जाए मुझे भरे आए मरण काल का द्रास न भरे आए हु जो सदा हमारे बच्चा श्री अस्त जो करे और अच्छा राख ले मुहे रखन हारे साहिब संत सहाय प्यारे दीन बंद दर्शन के हंता तुम्हो पुरी चतुर्दश कंता काल पाए ब्रह्मा बबतरा काल पाए सब जुग अवतरा काल पाए कर विष्ण प्रकाशा सकल काल का किया तमाशा जवन काल जोगी सब कियो वेदराज ब्रह्मा जू थियो जवन काल सब लोक सवारा नमस्कार है ताहि हमारा जवन काल सब जगत बनायो देव दैंत जशन उपजायो आदि अंत कै अवतारा सोई गुरु समझे हमारा नमस्कार दसी को हमारी सकल प्रजा जने आप सवारी सेवकन को सेव गुण सुख दियो सदरन को बल मोहद कियो कट कट के अंतर की जानत बले बुरे की पीर पछानत चीटी दे गुंजरिया सूला सब पर कृपा दृढ़ कर भूला संतन दुख पाई दे दुखी सुख पाई साधन के सुखी एक एक की पीर पछाने कट कट के पट पट की जाने जब उद करख करा कर दारा प्रजा दर्द दव दे अपारा जब या करख करत हो कब हूँ तुम मैं मिलत दे दर सब हूँ जेते बदन श्रेठ सब धारे आप अपनी बूझो जा रहे तुम सब ही तेरा तदरालम जानत वेद भेद आलम निरंकार निर्भकार निरलंब आद नील आद असंभ ताका मूढ़ चारत भेदा जाको पेव न पावत भेदा ताको कृपाहन अनुमानत महामूढ़ कछ भेद न जानत महादेव को कह सदा सेव निरंकार का चिंत न भेव आप अपनी बुद्ध है जीती वर्णत बिन बिन दोहे देती तुमरा लखा न जाय पसारा गे विद प्रथम संसारा एका रूपा अनूप स्वरूपा रंग भयो राव गई भूपा अंड

प्रसाद स्वरूप स्वयं पव। अब रक्षा मेरी तुम करो, सिखो बार सिख संग्रह, दोष जेते उठ पत पाता, सकल मलेश करो ऋण काटा। जे अस तुज तब शरणी परे, दिन के दोष का दुख तब मरे, पुरख जवन पग भरे दिहारे, दिन के तुम संकट सब टारे। जो कल को एक बार त्याय है, ताके काल निकट नहीं है, रक्षा हुई ताई सब काला, दुष्ट रेष्ट डरें तत काला। कृपा दृष्ट धन जहन हरे हो, दागे ताप धन कमो हरे हो, रिद्ध सिद्ध कर्म सब होई, दोष शास वस कह न कोई। एक बार जिन तुम संभारा, काल फास दे ताई उबारा, जिन नर नाम त्यारो का, दारद दोष दोग तेरा। खड़ग केत में शरण तिहारी, आप हा दिले उबारी, सर्व धर्म हो सहाई, दोष दोग दिले बुझाई। खड़ग केत में शरण तिहारी, आप हास दल उबारी, सर्व ठौर महो साई, दुष्ट दुख दिल बचाई। खड़ग केत में शरण तिहारी, आप हास दल उबारी, सर्व ठौर महो साई, दुष्ट दुख दिल बचाई। सोइया आए गए जब ते तुमरे तब ते को आगत नहीं आने, और रावण परीन प्राण करा आने, कैम अधिक न माने।

दोहरा सकल द्वार का छाड़ कह गया तो हर द्वार बांग है की लाज अस गोविंद दास तुहार राम कली महला तीजा आनंद एक ओंकार सतगुरु प्रसाद आनंद पाया मेरी माए सतगुरु मैं पाया सतगुरु दा पाया सहज सेती मन वजियां वधाइयां राग रतन परवार परियां शब्द गा बणाइयां शब्द दंगा बुहरी केरा मन जिनी बसाया कहे नानक आनंद हुआ सतगुरु मैं पाया ए मन मेरिया तू सदा रहू।

कहे नानक शब्द धन है हीरा आज दृढ़ाओ शिव संगत आपको पाई कहे करता पी हुकुम बरताई आप विखे गुरमुख से बजाई तोड़े बंधन हो वे मुक्त शब्द मन वसाई गुरमुख जिसन आप करे सो वै कष्टों ने बुलाई कहे नानक आप करता पी हुकुम बजाई सिमरत शास्त्र पुन पाप विचार दे तत्सार न जानी गुरु बाजो तत्सार न जानी देही गुणी संसार परम सुता सुत्या रहन बयानी गुर कृपा तिसे जन जागे जिन हर मन वस्या बोले अमृत बाणी कहे नानक सो दत पाए जिसनों आन दिन हर लेव लागे जागत बैरण बयानी माता के उदर में व्रत पाल करे सुख मनोवसारी है मन कवसारी उड़दाता जगन में आहार पहुंचावे उसनों कह पो न सके जिसनों अपनी ने बुलावे अपनी लव्या पे लाए गुरमुख सदा संभाली है कहे नानक उड़दाता सुख मनोवसारी है जैसी अग्न द्रव है तैसी पार माया अगन सभी को जेही करता खेद्र जाया जहां तिस पाणा ते जमया पर बार बल पड़े पाया लैव छुड़के लगे दिशा माया अमर बरदाया ए माज तर विसर मोह जय बहुत जलाया कहे नानक गुर प्रसादी जिना लेवला गीत ने विच माया पाया हर आप मुलक है मुल न पाया जाई मुल न पाया जाई किसे बिटो रह लोक बिन लाई ऐसा सतगुर जी मिले तिसनों सिर सौंपिया विचों आप जाई जियो मैले बारो निर्मल बारो

सुनते पुनीत गाय देवत सतगुर रहे अपर पूरे मिनवंत नानक गुरु चरण लागे वाजे आन हर दूरे वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।

हम अवगुण परे एक गुण नाही अमृत शाड बिखै बिख खाई माया मोह परम पै पूले सुतदारा सम प्रीत लगाई। एक उत्तम बंत सुनियो गुर संगत तेह मिलंत जम त्रास मिटाई। एक अरदास भाट किरद की गुरु रामदास राखो शरणाई। सतनाम श्री वाहिगुरु जी। राग सोरठ की वार श्लोक महला तीजा। विण नावै सब परम देन अत जग तोटा संसार। मनमुख कर्म कमावणे होमै अंध गुबार। मन विण नावै सब परम देन अत जग तोटा संसार। मनमुख कर्म कमावणे होमै अंध गुबार। गुरमुख अमृत पीवना नानक शब्द विचार। महला तीजा। सहजे जागै सहजे सोवै गुरमुख आनदन औस्तत होवै। मनमुख भरमे सहसा होवै अंतर चिंता नींद ना सोवै। ज्ञानी जागहे समय सुपाए नानक नाम रत्या बल जाओ पौड़ी।

0: गुरमुख हर जपया। जो हर नाम ध्यावे तिन डर सड़कतिया, गुरमती देव आप गुरमुख हर जपया। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।
1: सतनाम वाहिगुरू।

काल मुतजुनी सैभंग प्रसाद असा महला पहला वार श्लोका नाल श्लोक पी महले पहले के लिखे टुंडे असराजे की तुनी श्लोक महला पहला बलिहारी गुर अपने दिहाड़ी सदवार

पौड़ी सेव किती संतोख जिन सचो सच आया ओनी मन दे पैन रखियो कर पितरम तुमाया ओनी दुनिया तोड़े बंदना अन पानी थोड़ा खाया तूब किसी अगला निदे वेच रसवाया वड्याई वड्डा पाया वड्याई वड्डा।

कूड़ राजा कूड़ प्रजा कूड़ सत्संसार कूड़ मंडप कूड़ माणिक कूड़ दर्शन हार कूड़ सुना कूड़ रूपा कूड़ पहनहार कूड़ काया कूड़ कपड़े कूड़।

0: तू करता करना मैं ना जाऊ करना होई बोले आज कुछ वैसे तेरा अंतिम जाए लिखा रहा जात में जो जोत में जाता कुकला पर पूरिया तू सच्चा सर स्वर जिंदगी सो पार पया कौन आन करते क्या बात जो कुछ करना सो कर महला दूजा
1: योग शब्द ज्ञान शब्द वेद शब्द ब्राह्मण है क्षत्रिय शब्द सूर शब्द शूद्र शब्द प्राकृत है सर्व शब्द एक शब्द

जुग जुग फेर वटाई अज्ञानी बुझताए। सतयुग रस संतोका तर्म गिरथवाहो, त्रेतै रस जत का जोर गिरथवाहो। द्वापर रत का सत अगर त्वाहो।

श्याम कह सितम्बर स्वामी साच मैं आशय साच रहे सबको ससमा वैर कह रहे भरपूर राम नाम देवा मैसूर नायल अपराध जाए नारक तो मुखंतर पाए जुज मैं जोर चली चंद्रावल कान कृष्ण जादम पया पार जात गोपी ले आया

जेकर सुत मने सब ते सुत कहो गोहे अते लकड़ी अंदर कीड़ा होए जेते दाने।

पांड जमिय पांड निमिय पांड मंगण वियाहो पंडो वह दूसरी पंडो चल जाओ पांड मुआ पंड पल।

0: पंडोई पंड पूजा पंड बाजना का पंडोही पांडू पूजा पंडे बाज ना को
1: नानक पंडे बाहरा एको सच्चा सोए
2: जित मुख सदा सलाइए पागा रती जा
0: नानक ते मुख जले
1: जित सच्चे दरबार फौड़ सकुआ कह

0: हर हर मन उतार मन उतार।
1: सुनो महला पहला नानक सिक्का बोलिया तन मन सिक्का हो सिक्को सिक्का सुजे सिक्का सिक्की सो सिक्का जगे सकी है मुझका सिक्के पार।

अठ सत तीर्थ जे नावे उतर नाहीं मैं। जिन पट अंदर बार गुदड़ते पले संसार तिन न्यों लगा रब जति देखने विचार। रंग वस रंग रोवे चुप भी कर जा परवाह नाही किसी के रिबास चनाए। दरबार ऊपर खर्च मंगा जब देता खाए दीवान एको कलम एक मत मामेल। दर ले लिखा पीड़ित नान का जो

सो चलती सबको आई वारी है, जिसके जी प्राण है तो साई मनोविसारी है। अपन हथे अपना आपे ही का सवारी।

पौड़ी चाकर लगी चाकरी जे चल किसमें पाए फुरमत स्नो अगली हो वजो पेदूना खाए किसमें बराबरी बराबरी कृपया तंद्र पाए वजो गवाए अगला मुहिम पाना खाए जिदा दिता खावना दिस कही साबास।

0: से जो पाइए नान सा करमा साहेब सुठे जो मिले मोहल्ला दूजा
1: एक नहीं चाकरी जितता कसम ना जाए नानक सिंह कांडिया जिस खत्म समाए और ना खत्म ना।

पार आवार आप कराए शक्ति फिर आप कराए मार इकना गली जंजीर अक्री चढ़े बिछयार आप कराए करे आप हो कैसे करी पुकार।

से सुखवासी सब को सिमर सदा अविनाशी सिमरन ते लागे जिने आप दयाला नानक जन की मंगै रोआला प्रभ को सिमर है से पर उपकारी प्रभ को सिमर है तिन सद बलिहारी प्रभ को सिमर है से मुख सहावे प्रभ को सिमर है तिन सुख बिहावे प्रभ को सिमर है तिन आत्म जीता प्रभ को सिमर है तिन निर्मल रीता प्रभ को सिमर है तिन अनदिक नेरे प्रभ को सिमर है बत है हर नेरे संत के पाते अन दिन जाग नानक सिमरन पूरे भाग प्रभ कै सिमरन कारज पूरे प्रभ कै सिमरन कबू न चूरे प्रभ कै सिमरन हर गुण बाणी प्रभ कै सिमरन सह सुमानी प्रभ कै सिमरन निश्चल आसन प्रभ कै सिमरन कमल विगासन प्रभ कै सिमरन अरहद चुनकार सुख प्रभ सिमरन का अंत न पार सिमरह से जन जिनको प्रमया नानक तिन जन सरणी पया हर सिमरन कर भगत प्रगटाए हर सिमरन लाग बेद उपाए हर सिमरन पय सिद्ध जति दाते हर सिमरन नीत चहु कुंट जाते हर सिमरन धारी सब धरना सिमर सिमर हर कारण करना हर सिमरन कियो सगल अकारा हर सिमरन मैं आप निरंकार कर कृपा जिसे आप बुझाया नानक गुरमुख हर सिमरन तिन पाया सलोक दीन दर्द दुख भंजना

तेरे संग सहाय जा महा भयान दूत जम दले ता केवल नाम संग तेरे चले जा मुश्किल होवे अत पाई हरको नाम खिन माही उदारी अनक पुनः चरण करत नहीं तरै हर को नाम कोट पाप पर हरे गुरमुख नाम जपो मर मेरे नानक पावो सुख कनेरे सगल सृष्ट को राजा दुखिया हर का नाम जपत होए सुखिया लाख करोड़ी बंधन परे हर का नाम जपत निस्परे अंक माया रंग तिख ना बजावे हर का नाम जपत आगावे जेह मार्ग ए जात अकेला हर नाम संग होत सहेला ऐसा नाम मन सदा त्याई है नानक गुरमुख परम गत पाई है छूटत नहीं कोट लक बाही नाम जपत तह पार पराही अनक बिगन जहां आए संगार है हर का नाम तत्काल उधार है अनक जोन जन्मे मर जाम नाम जपत पावे विश्राम हो मैला मलक भूना तो हुए हर का नाम कोट पाप खोए ऐसा नाम जपू मन रंग नानक पाइये साध कै संग जे मारिक के गने जाहे ना कोसता हर का नाम हस संग तोसता जे पेंड महा अंध गुबारा हर का नाम संग उजियारा जहां पंथ तेरा को ना सियानु हर का नाम ता नाल पहचानु जहां महा भयान तप्त बहु काम ता हर के नाम की तुम ऊपर श्याम जहां त्रिखा मन तुझ आकख है ता नानक हर हर अमृत बरख है भगत जना की बर्तन नाम संत जना के मन विश्राम हर का नाम दास की ओट हर कै नाम उदरे जनकोट हर जस करत संत दिन रात हर हर औकद साधक मात हर जन कै हर नाम निदान पार ब्रह्म जन कीनो दान मन तन रंग रते रंग एक है नानक जन कै बिरत बिबेक है हर का नाम जन को मुकत जुगत हर कै नाम जन को त्रिपत भुगत हर का नाम जन का रूप रंग हर नाम जपत कब परे ना भंग हर का नाम जन की वड्याई हर कै नाम जन शोभा पाई हर का नाम जन को भोग जोग हर नाम जपत कछ नाहीं वियोग जन राता हर नाम की सेवा नानक पूजे हर हर देवा हर हर जन कै मालिक जीना हर धन जन को आप प्रभ दीना हर हर जन कै ओट सतानी हर प्रताप जन अवर ना जानी पोत पोत जन हर रस राते सुन समाद नाम रस माते आठ पहर जन हर हर जपे हर का भगत प्रगट नहीं छपे हर की भगत मुक्त बहु करे नानक जन संग केते करे पार जात ए हर को नाम काम तेन हर हर गुण नाम सब ते उत्तम हर की कथा नाम सुनत दर्द दुख लत्ता नाम की महिमा संत दिवस संत प्रताप दुर्त सब नस संत का संग बड़ भागी पाई है।

संत की सेवा नाम ते आई है। नाम तुल कछ अवर ना हुए, नानक गुरमुख नाम पावे जन को श्लोक। बहु शास्त्र बहु सिमरती, पेठे सर्ब टंडोल। पूजत नाही हर हरे, नानक नाम अमोल। अष्टपदी जाप तत ज्ञान सब ध्यान, खट शास्त्र सिमरत ज्ञान। योग अभ्यास कर्म धर्म क्रिया, सगल त्याग मन मदे फिरिया। अनक प्रकार किए बहु जतना, पुन दान होमे बहु रतना। शरीर कटाए होमे कर राती, वर्त नेम करे बहु पाती। नहीं तुल राम नाम विचार, नानक गुरमुख नाम जपिए एक बार। नौ खन पृथ्वी फिरे चिर जीवे, महा उदास तपीसर थीवे। अग्र माहे होमत परान, अनक असव है गुरुपूम दान। न्योली कर्म करे बहु आसन, जैन मार्ग संयम अत साधन। निमक निमक कर शरीर कटावे, तो भी होमे मैल ना जावे। हर के नाम संसर कठ नाही, नानक गुरमुख नाम जपत घत पाहे। मन कामना तीर्थ दे छुटे, गर्भ गुमान ना मन ते हुटे। सोच करे दिन से अर रात, मन की मैल ना पन पे जा। इस देही को बहु साधना करे, मन ते कबू ना बिखिया ठरे। जल तोवे बहु दे अनीत, शुद्ध कहा हुए काची पीत। मन हर के नाम की महिमा ऊच, नानक नाम उदरे पतत बहु मूच। बहुत स्यान पजम का पहु व्याप, अनकिदकन कर त्रिशन ना ताप। एक अनेक अगन नहीं बुझे, कोट अपाल दृग नहीं सिजे। झूठ सनाही ऊप पयाल, मोहे व्याप माया जाल। अवर करतूत अगली जमदान, गोविंद भजन बिन तिल नहीं मान। हर का नाम जपत दुख जाए, नानक बोले सहज सुभाए। चार पदार्थ जे को मांगे, साध जना की सेवा लागे। जे को अपना दुख मटावे, हर हर नाम हृदय सद गावे। जे को अपनी शोभा लूरे, साध संग ए हम मैं छूरे। जे को जन्म मरण ते डरे, साध जना की सरनी परे। जिस जन को सब दर्स प्यासा, नानक ताके बल बल जासा। सगल पुरख में पुरख प्रदान, साध संग जाका मिटे अभमान। आपस को जो जाने नीचा, सो गनिये सब ते ऊंचा। जाका मान होए सगल की रीना, हर हर नाम तिन घट घट चीना। मन अपने ते बुरा मटाना, पेखे सगल शिष्ट साजना। सुख दुख जन सम दृष्टिता, नानक पाप पुन नहीं लेपा। निर तन को तन तेरो नाओ, नतामे को नाओ तेरा थाओ। नमाने को प्रभ तेरो मान, सगल कटा को देव दान। कर्ण करावन हार स्वामी, सगल कटा के अंतर जामी। अपनी गत मित जानो आपे, अपन संग आप प्रभ राते। तुमरी उस्तत तुम ते होए, नानक अवर ना जान सकोए। सर्व धर्म मैं श्रेष्ठ धर्म, हर को नाम जप निर्मल कर्म। सगल क्रिया मैं उत्तम क्रिया, साध संग दुर्मत मल हिरिया। सगल उदम मैं उदम भला, हर का नाम जपो जी सदा। सगल बाणी मैं अमृत बाणी, हर को जस सुन रसन बखाणी। सगल थान ते ओ उत्तम थान, नानक जे कट वस्ते हर नाम स्लोक।

त्राल कबहू सर्ब की हो तरवाल कबहू होए बह बड राजा कबहू भिखारी नीच का साजा कबहू अपकीर्त मह आवे कबहू भला भला कहावे ज्यों प्रभ राखै तिवहि रहै गुर प्रसाद नानक सच कह कबहू होए पंडित करे बखियान कबहू मोन तारी लावे ध्यान कबहू तत तीरथ इशनान कबहू सिद्ध साधक मुख ज्ञान कबहू कीर्त हस्त पतंग होए जिया अनक जोन परमे परमिया नाना रूप ज्यों स्वांगी दिखावे जो प्रपावे तवे निचावे जो तिस पावे सोई होए नानक दूजा अवर न कोए कबहू सार संगत के पावे उस स्थान ते बहुर न आवे अंतर होए ज्ञान प्रगास उस स्थान का नहीं बनास मन तन नाम रते एक रंग सदा बसह पार ब्रह्म कै संग जो जल मैं जल आए खटाना ज्यो ज्योति संग ज्योत समाना मिट गए गवन पाए विश्राम नानक प्रभ कै सत कुरबान सलोक सुखी बसै मस्किनिया आप नवार तले बड़े बड़े अहंकारिया नानक गर्भ गरे अष्टपदी जिसका अंतर राज बमान सो नरक पाती होवत सुवान जो जाने मैं जो बनवंत सो होवत बिस्ता का जंत आपस कहो कर्मवंत कहावे जन्म मरे बहु जून प्रमावे तन भूम का जो करे गुमान सो मूर्ख अंधा अज्ञान का कृपा जिसका हृदय गिरिदी बसावे नानक यहां मुक्त आज्ञा सुख पावे तनवंता हुए कर गिरबावे तिन समान खस संग ना जावे बहु लश्कर मनुख ऊपर करे आस बल पीतरता का हुए बनास सब ते आप जाने बलवंत किन मैं हुए जाए पसमंत किसे ना बदे आप अहंकारी धर्म राय तिस करे कुवारी गुर प्रसाद जाका मिटे अभमान सो जन नानक बरगह प्रवान कोट कर्म करे हो तारे धर्म पावे सगले बिरतारे अनक तपस्या करे अहंकार नरक सुर्ग फिर अवतार अनक यत्न कर आत्म नहीं दरवे हर दरगा कहो कैसे गवे आपस को दो भला कहावे जिसे भलाई निकट न आवे सर्व की रेन जाका मन होए कहो नानक ताकि निर्मल सोए जब लग जाने मुझके कष्ट होए तब इसको सुख ना ही कोए जब ए जाने मैं कित करता तब लग गर्भ जोन में फिरता जब तारे को बैरी मीत तब लग निकट न ही चीत जब लग मोह मगन संग माए तब लग धर्म राये देश जाए रब कृपा ते बंधन टूटे गुरु प्रसाद नानक हो छूटे सहस खटे लख को उठता आवे तृप्तना आवे माया पाचे पावे अनक भोग दिख्या के करे न तृप्तावे खप खप मरे बिना संतोख नहीं को राज्य सपन मनोरथ बिरते सब काज नाम रंग सर्व सुख होए बडभागी किसे प्राप्त होए करन कराम ने आपते आप सदा सदा नानक हर जाप करन कराम करन हार इसके हाथ कहा विचार जैसी दृष्ट करे तैसा होए आपे आप प्रभ सोए जो किस किनो सो अपने रंग सब ते दूर सब हूं कै संग बुझे देख करे विवेक आपे एक आपे अनेक मरे न बिनसे आवे न जाए नानक सद ही रहया समाए आप उपदेश है समझे आपे रचिया सब कै साथ आप किनो आपन विस्तार सब कछ उसकाओ करने हार उसते पिन कहो किस होए शांत नंतर एक ऐसोए अपने चलत आप करने हार कौटक करे रंग पार मन में आप माने अपने माहे नानक कीमत कह न जाए सत सत सत प्रभ स्वामी गुर प्रसाद किने बखियानी सच सच।

बहुर बहुर अवतार अष्टपदी संत कै दुखन हर जग कटै संत कै दुखन जमते नहीं छुटै संत कै दुखन सुख सब जाए संत कै दुखन नरक में पाए संत कै दुखन मत होए मलीन संत कै दुखन सोभा ते हीन संत के हत्ते को रखे ना कोई संत कै दुखन थान भ्रष्ट होए संत कृपाल कृपा दे करै नानक संत संग इंद्र पीतरै संत के दुखन ते मुख भवै संतन कै दुखन काग जून लवै संतन कै दुखन सब जुन पाए संत कै दुखन त्रिग जुन कमाए संतन कै दुखन तृष्णा मैं जलै संत कै दुखन सब को चलै संत कै दुखन तेज सब जाए संत कै दुखन नीच न चाए संत दुखी का था को नाही नानक संत पावै ता वे भी गत पाए संत का निंदक महा अतताई संत का निंदक किन टिकण ना पाई संत का निंदक महा प्यारा संत का निंदक परमेश्वर मारा संत का निंदक राज ते हीन संत का निंदक दुखिया अरदीन संत के निंदक को सब रोग संत के निंदक को सदा बिजोग संत की निंदा दुख में दुख नानक संत पावे ता उसका भी होए मोख संत का दुखी सदा अपवित संत का दुखी किसै का नहीं मित संत के दुखी को दान लागे संत के दुखी को सब त्यागे संत का दुखी महा अहंकारी संत का दुखी सदा बेकारी संत का दुखी जन्मे मरे संत की दुखना सुख ते तरे संत के दुखी को नाही ठाओ नानक संत पावे ता लहे मलाए संत का दुखी अद बीच के टूटे संत का दुखी कित काज ना पहुंचे संत के दुखी को उद्यान परमाइये संत का दुखी उजड़ पाइये संत का दुखी अंतर तेत होता जो सास बिना मृतक की लोता संत के दुखी की जड़ किसना ही अपन बीज आपे ही खाए संत के दुखी को अवर न रखन हार नानक संत पावे ता ले उबार संत का दुखी यूं बिल लाए जो जल बिहून मछली तड़ पड़ाए संत का दुखी भूखा नहीं राजै जो पावक ईदन नहीं त्रापै संत का दुखी छुटै अकेला जो बुआर तिल खेत माही दहेला संत का दुखी तम ते रहत संत का दुखी सब मिथ्या कहत किरत निंद का तुही पया नानक दोत पावै सोई थिया संत का दुखी बिगड़ रूप हो जाए संत के दुखी को दरगह मिले सजाए संत का दुखी सदा सहकाई है संत का दुखी ना मरे ना जवाई है संत के दुखी की पूजे ना आस्था संत का दुखी उठ चले नास्ता संत कै दुख ना त्रिष्टै कोई जैसा पावे तैसा कोई होए पया कीर्तना मेटै कोई नानक जाने सच्चा सोए सब कट तिसके ओ करने हार सरा सदा तिसको नमस्कार प्रभु की उस्तत करो दिन रात चितै त्याग हो सास ग्रास सब कुछ वरतै तिसका किया जैसा करे तैसा कोतिया अपना खेल आप करने हार।

सलोक रूप नरेख नारंग किस तेह गुण ते प्रभु भिन्न तिसे बजाए नानका जिसो ऐसो प्रथम परी अविनाशी ब्रह्मन में राग मानुख की तुम प्रीत त्याग तिते परे नाही किस होए सर्व निरंतर एको सोए आपे बीना आपे दाना गहर गंभीर गहीर सुजन पार ब्रह्म परमेश्वर गोविंद कृपा निधान दयाल बख्शंद साध तेरे की चरणी पाओ नानक कै मन के अनराव मनसा पूर्ण सरना जोग जो कृपाया सोई होग हरन परन जाका नेत्र फोर तिसका मंत्र ना जाने होर अंध रूप मंगल सद जाके सर्व थोक सुनिए कर तक राज महराज जोग मह जोगी तप मह तपीसर गृहस्थ मह भोगी त्याए त्याए भगत है सुख पाया नानक चित पुरख का किने अंत न पाया जाकी लीला की मित नाही सगल देव हारे अवगाए पिता का जन्म के जाने पूत सगल पुरोई अपने सूत समत ज्ञान ध्यान।

राजा के रंग नाना पेशकर एक रंग नाना विद तीनों विस्तार सब अवनासी एक अंकार नाना चरत करे खिमाही पूरे पूर्ण सब ठाई नाना विद करबंत बनाई अपनी कीमत आपे पाई सब घट तिसके सब तिसके ठाओ जप जप जीव नानक हर नाओ नाम के तारे सगले जंत नाम के तारे खंड ब्रह्मांड नाम के तारे सिमरत बेत्रान नाम के तारे सुन ज्ञान ध्यान नाम के तारे आकाश पाताल नाम के तारे सगल अकार नाम के तारे पुरिया सपन नाम के संग उदरे सुन सरवन कर कृपा जिसे अपने नाम लाए नानक चौथे पद में सो जन गत पाए रूप सत जाका सत स्थान पुरख सत केवल प्रधान करतूत सत सत जाकी बाणी सत पुरुष समाहि समाणी सत कर्म जाकी रचना सत मूल सत सत उत्पत सत करनी निर्मल निर्मली जिसे बजाए तिसे सब भली सत नाम प्रभु का सुखदाई विश्वास सत नानक गुरते पाई सत बचन साधु उपदेश सत तेजन जान कै हृदय प्रवेश सत निरत बूझे जे कोए नाम जपत ताकी गत होए आप सत किया सब सत आपे जाने अपनी मित गत जिसकी सिष्ट सो करने हार अवर ना बूझ कत विचार करते की मित ना जाने किया नानक जोत पावे सो वर्तिया बिस्मन बिस्म पै बिस्माद जिन बूझिया आया स्वाद प्रभ कै रंग राच जम रहे गुर कै बचन पदार्थ लहे कोई दाते दुख काटन हार जन कै संग तरै संसार जन का सेक सुवड़ भागी जन

कर फिरत फिरत प्रभ आया पर्यातो शरणाय नानक की प्रभ बेनती अपनी भक्ति लाय अष्टपदी जाचक जन जाचे प्रभ दान कर कृपा देव हर नाम साजना की मंगो तूर पार ब्रह्म मेरी श्रद्धा पूर सदा सदा प्रभ के गुण गाओ सास सास प्रभ तुम त्याओ चरण कमल स्यों लागे पीत भगत करो प्रभ की नित नीत एक कोट एको आधार नानक मांगे नाम प्रभ सार प्रभ की दृष्ट महा सुख होए हरस पावे बिरला कोए जिनका क्या से जन तृप्तानी पूर्ण पुरख नहीं डोलानी सुभर भरे प्रेम रस रंग उपजय चाओ सार कै संग परे शरण आन सब त्याग अंतर प्रगास अन दिन लिवलाग बड़ भागी जपया प्रभ सोए नानक नाम रते सुख होए सेव की मस्ता पूरी थी सतगुर ते निर्मल मत लई जान को प्रभ होयो दयाल सेवक कीनो सदा निहाल बंधन काट मुक्त जन पया जन्म मरण दुख परम गया इस पुन्नी सदा सब पूरी रव रहया सरसंग हजूरी जिसका सत लिया मलाए नानक प्रति नाम समाए सो तुम बिसरै जे काल न पाने सो तुम बिसरै जे किया जाने सो तुम बिसरै जिन सब किसरिया सो तुम बिसरै जे जीवन जिया सो क्यों बिसरै जे अगन मै राखै गुर प्रसाद को बिरला लाखै सो क्यों बिसरै जे बिख ते काढ़ै जन्म जन्म का टूटा गांड है गुरपुरै तत एह बजाया प्रभ अपना नानक जन त्याया साजन संत करो ए काम आन त्याग जपो हर नाम सिमर सिमर सिमर सुख पावो आप जपो अवर नाम जपावो अगत पाए तरिया संसार बिन भगति तन हो सीकार।

मन पाई बहु पूजन का प्रसंगीत रसना जपती हरणीत फली सु करनी सुभासनवंत हृदय बसे पूर्ण गुरमंत सार संग प्रभ देव निवास सर्व सूत नानक प्रगास श्लोक सरगुण निर्गुण नंकार सुन समाधि आप आपन किया नानका आपे फिर जा पशुपदी तब अकार खतना दृष्टिता पाप पुण तब कहते होता जब तारी आपन सुन समार तब वैर विरोध के संकमात जब इसका वर्ण चिन्ह न जापत तब हरख सोग कहो किसे व्यापत जब आपन आप पार ब्रह्म तब मोह कहा किस होवत परम आपन खेलो आप व्रतीजा नानक करने हार ना दूजा जब होवत प्रभ केवल तनी तब बंद मुक्त कहो किसको गनी जब एक है हर अगम अपार तब नरक स्वर्ग कहो कौन अवतार जब निर्गुण प्रभ से सुपाए तब सेव सकत कहो कित ठाए जब आप है आप अपनी जोत पर है तब कवन नर कवन कत नर है आपने चलत आप करने हार नानक ताकुर अगम अपार अब नासी सुखे अपने आसन तन जन्म मरण को कहा बनासन जब पूर्ण करता प्रभ सोए तब दम की त्रास कहो किस होए जब अवगत अगोचर प्रभ एका तब चित्र गुप्त किस पूछत लेखा जब नाथ निरंजन अगोचर अगादे तब कौन छुटे कौन मुंदन मादे आपन आप ही चर्जा नानक अपन रूप आप ही ऊपर जा जहाँ निर्मल पुरख पुरख पत होता तह बिन मैल कहो क्या तूता जहाँ निरंजन रंकार निर्माण तह कौन को मान कौन अपमान जहाँ स्वरूप केवल जगदीश तहाँ छल सिदर लगत कहो कीस जहाँ ज्योत स्वरूपे ज्योत संग समावे ताह किस पूख कवन तृप्तावे करन कराम करन हार नानक कते का नहीं सुमार जब अपनी सुबा अपन संग बनाई तब कवन माए बाप मित्र सुत पाई जहाँ सर्व कला आप है प्रवीन ता भेद के तेव कहाँ कोचीन जब आपन आप उतारे तो सगन अप सगन कहाँ बिचारे जहाँ आपन ऊच आपन आप नेरा ता कौन ठाकर कौन कहिए चेरा विस्मर विस्मर ही विस्माद नानक अपनी गत जान हो आप जहाँ अचल अचेद अपेद समाया ऊह किसे व्याप्त माया आप को आप है आदेश एक गुण का ना ही प्रवेश जहाँ एक है एक एक भगवंता ता कौन चिंत किसला गए चिंता जहाँ अपने आप पतियारा ता कौन कहता है कौन सुनने हारा बहु बेअंत ऊंच दे ऊंचा नानक आप को आप है पहुंचा जहाँ प्रचु प्रपंकार ते गुण में कीनो विस्तार पाप पुण्य ता पही कहावत हो नरको को सुर्ग बंछावत आल जार माया जंजाल हो मैं मो परम पै पार दुख सुख मान अपमान अनक प्रकार कियो बखान आपन खेल आप कर देखे खेल संकुच है तो नानक एक है जहाँ अवगत भगत आए आप जहाँ पसरे पसार संत करता दुहू पाख का आप है तनी उनकी शोभा उन्हू बनी आप है कौतिक करे अमद चोज आप है रस भुगन निर्जोग जिस पावे तिस आप नाई लावे जिस पावे तिस खेल खिलावे।

सारसपदी आप कथे आप सुनने हार आप का विस्तार जंत सुभावे तशिष्ट उपाय अपने पाने ले समाय तुम ते पिन नहीं किस होए अपन सूत सब जगत परोए जाको प्रभ जीवा बजाए सच नाम सोई जन पाए सो समदर्शी तत का बेता नानक सगल सृष्ट का जेता जी जंतर सब ता कह हाथ दीन दयाल अनाथ को नाथ जिस राखे इस कोई न मारे सो मुआ जिस मनु बसारे तिस ताज अवर कहां को जाए सब सिर एक निरंजन राय जी की जुगत जाके सब हाथ अंतर बाहर जानो साथ गुण निदान बेअंत अपार नानक दास सदा बलिहार पूर्ण पूर रहे दयाल सब ऊपर होवत कृपाल अपने कर्तव्य जाने आप अंतर जामी रहो ब्याप तित पालै जीन बोपांत जो जो रचियो सो तिसै त्यात जिस पावे तिस लई मलाय भगत कह हर के गुण गाए मन अंतर विश्वास कर मानिया करन हार नानक एक जानिया जन लागा हर के कहनाए जिसकी आसन बिरती जाए।

नाम तब करो विचार दुर्लभ देह का करो उदाहर अमृत बचन हर के गुण गाओ प्राण प्रण का यह स्वाव आठ पहर प्राप्त खुनीरा मिटे ज्ञान बिनसे अंधेरा सुन अपरेश हृदय बसाव मन इच्छे नानक फल पाव हलत पलत बोलो सवार राम नाम अंतर उतार पूरे गुरु की पूरी दीखिया जिस मन मस्त तिस साच परीखिया मन तन नाम जपो लिवलाए दुख दर्द मन ते पहुँच जाए सच व्यापार करो व्यापारी धग्गे नि बह के तुम्हारी इक्का एक रखो मन माए नानक बहुर ना आवे जाए जिसके दूर कहाँ को जाए उबरे राखन हार त्याए निरपो जपे सगल पहो मिटे प्राण कृपा ते प्राणी छुटे जिस पर राखे तिस ना ही दुख नाम जपत मन होवत सुख चिंता जाए मिटे अंकार जिस जन को कोई ना पहुंचन हार तेरे ऊपर ठांडा गुरसूरा नानक ताके कार्य पूरा मत पूरी अमृत जाकी दृष्ट दर्शन पे कत उदत श्रेष्ठ चरण कमल जाके अनूप सफल दर्शन सुंदर हर रूप तान सेवा सेवक परवान अंतर जामी पुरख प्रदान जिस मन बसते सो होत निहाल आके निकट न आवत काल अमृत पे अमरा पर पाया साध संग नानक हर त्याया सलोक ज्ञान अंजन गुदिया अज्ञान अंधेर बनास हर कृपा ते संत पीटिया नानक मन प्रगास अस्पदी संत संग अंत प्रवरीता नाम प्रभु का लागा मीठा सगल समग्री एक घट माही हन करंग नाना दिष्टाही नौ निन अमृत प्रप का नाम देही मैं इसका विश्राम सुन समार अनंत तैनाद कहना जाई चर्ज विस्मार इन देखिया जिस आप दिखाए नानक ते जन सो जी पाए सो अंतर सो बार अनंत कट कट व्याप रहा भगवंत तरन माहे आकाश पयाल सब लोक पूर्ण प्रतिपाल बान तिन पर्वत है पार ब्रह्म जैसी आज्ञा तैसा कर्म पौन पाई व्यसम तर माहे चार कुंट दैर से समाहे तिस्ते भिन्न नहीं कोठाओ गुरु प्रसाद नानक सुख पाओ वेद प्राण सिमृत में देख सतिय सूर नक्षत्र में एक वाणी प्रभु की सब को बोले आप अडोल ना कब हूँ डोले सर्व कला कर खेल खेल मोल ना पाइये गुण है अमोल सब ज्योत में जाकी ज्योत आ रहे हो स्वामी ओतपोत गुरु प्रसाद परम का नास नानक तिन में ए बसास संत जना का पिखन सब ब्रह्म संत जना कह हृदय सब धर्म संत जना सुने सुब बचन सर्व व्यापी राम संग रचन जिन जाता तिसकी रहत सत बचन साधु सब कहत दो जो होए सोई सुख माने करन करावन हार प्रभ जाने अंतर बसे बार पियो ही नानक दर्शन देख सब मोही आप सत्य किया सब सत्य तिस प्रभ ते सगली उत्पत तिस पावे ता करे विस्तार तिस पावे ता एक अंकार अनक कला लखी न जाए जिस पावे तिस लय मलाय कवन निकट कवन कही है दूर आपे आप प्रपूर अंतरगत से आप जनाए नानक तिस जन आप जाए सर्व पूत आप वतारा सर्व नैन आप पेखनहारा सगल समग्री जा का तना अपन जस आप ही सुना आम न जान एक खेल बनाया आज्ञाकारी कीनी माया सब कै मत लिपतो रह जो किस कहना सो आपे कह आज्ञा आवे आज्ञा जाए नानक जा पावे ता ले समाए तिस दे हुए सुना ही बुरा पुरै कहो किने कच करा आप भला करतूत अतनी की आपे जाने अपने जी की आप साच तारी सरसाच पोत पोत आपन संग्राच ताकि गात्मित कही न जाए दूसर हुए तासो जी पाए तिसका किया सब प्रवान गुरु प्रसाद नानक के जान जो जाने तिस सदा सुख होए आप मलाए ले तब सोए ओ तनवंत कुलवंत पतवंत जीवन मुक्त जिस हृदय भगवंत तन तन तन जन आया जिस प्रसाद सब जगत तराया

पूरा प्रभ आराध्या पूरा जग का नाओ नानक पूरा पाया पूरे के गुण गाओ परि पूरे गुर का सुन उपदेश पार ब्रह्म निकट कर पेक साथ साथ सिमरोह गोबिंद मन अंतर की उतरे चिंद आस अनित त्यागो तरंग संत जना के तूर मन मंग आप छोड़ बेनती करो साध संग अग्न सागर तरो हर तन के पले हो पंडार नानक गुरु पूरे नमस्कार हेम कुशल सहज अनंत साध संपद परमानंद नरकनवार उदारो जियो गुण गोविंद अमृत रस पियो चित चितो हो नारायण एक एक रूप जाके रंग अनेक गोपाल दमोदर दीन दयाल दुख पंजन पूर्ण कृपाल सिमर सिमर नाम बारंबार नानक जी का यह आधार उत्तम श्लोक साध के बचन अमली कलाल ए रतन संत समावत होत उदार आप तरह लोक निस्तार सफल जीवन सफलता का संग जा कै मन लागा हर रंग जय जय शब्द अनाहद वाजय सुन सुनो अंधकरे प्रभु गाजय प्रगटे गोपाल महात कै माथे नानक द्रे तिन कै साथे शरण जोग सुन सरनी आए कर कृपा प्रभु आप मलाए मिट गए बैर भये सब नैन अमृत नाम साध संग लैन सुप्रसन्न भये गुरुदेव पूर्ण होई सेवक की सेव आल जंजाल बकारते रहते राम नाम सुनरत्न कहते कर प्रसाद दया प्रभतारी नानक निबिले के हमारी प्रभ की उस्तत करो संतमीत सावधान एकाग्र चीत सुखमनी सहज गोविंद गुण नाम जिस मन बसते सोहोत निदान सब इच्छा ताकि पूर्ण होए प्रधान पुरुष प्रगट सब लोए सब ते ऊंच पाए स्थान बहुर न होए आवन जान हर तनखा चले जन सोए नानक जिते प्राप्त होए खेम शांत नव निद बुद्ध ज्ञान सर्व तह सिद्ध विद्या तप योग प्रव ध्यान ज्ञान श्रेष्ठ उत्तम स्नान चार पदार्थ कमल प्रगास सब कै मद सगल ते उदास सुंदर चतुर तत का बेटा समदर्शी एक दुष्टिता ए फल तिस जन कै मुख पणी।

सिमरत शास्त्र भेद बखानी सगल मतांत केवल हर नाम गोविंद भगत कै मन विश्राम कोट अपराध साध संग मिटै संत कृपा ते जम ते छुटै जा कै मस्तक कर्म प्रभ

गावते राम गुण गावते। एक ग्रह वाजे पंच शब्द वड भाग मथोरा, तीन जन के सब पाप गए, सब दोष गए, सब रोग गए, काम क्रोध लोभ मोह अभिमान गए, तीन जन के हर मार कदे पंच चोरा। साहिब श्री गुरु रामदास महाराज जी की बाणी अंदर सानू बहुत लंबेरिया तो कान पढ़ने मिलनिया विचार मिलनगिया। केवल दो चीजों का पाठ आप संगत में श्रवण करवाया, 25-26 शब्दों के लगभग एक तुक बन गई है। गुरु रामदास महाराज जी ने बड़े प्यार के नाल सानू एक सुनेहा दिता है, जित जित अर्थ है जेड़ा घर जेड़ा हिरदा ग्रह, जोड़ा उच्चारण है ग्रह। आम असी जोड़ा उच्चारण कर जाते हैं ग्रह, बगे में सियारी पैर के रारा, यह अर्थ है घर। जिस तरह कल भी विचार अंदर या जदों भी इस पावन स्थान के उ समा मिलता है बनता है तो उद अक्सर यह गल संगत के ध्यान में लियान का जरूर एक यत्न होंदा है कि सतगुरां की बाणी के जिथे अखरी अर्थ हैं उथे भाव अर्थ है। गुरबाणी साडे वर्तमान जीवन तब्दील करती है, गुरबाणी अपने मन से लैके आना है, फिर परिवार से लैके आना है, फिर समाज से लैके आना है, ता ही अं सुप्यार मनुख बन सकते हैं। इस तरह होया नहीं, पहले समय अंदर गुरबाणी दी दो टुकां लै लैनियां, एक वीर ने पढ़ लेनिया, एक वीर ने घंटा बैठ के ते पुराणिक गथावां कहानियां उन्होंने साथ में रूप दे के सुना के चले जाना, तो कह देना एक कथा है। असल शब्द के अखरी अर्थ भाव अर्थ वर्तमान

दवाखाने ने देसी है आयुर्वेद का होम्योपैथी है ये सारे डॉक्टरों के कोलों दवा दारू द्वारा शरीर के रोगों का इलाज किया जा सकता है। गर्भाणी मानसिक रोगों का दवा दारू सानू दे रही है। तो रोग कौन ने होमे का रोग है, मोह का रोग है, ईर्खा का रोग है। जिस हिरदे रब के गुणा ने गाया उस ईर्खा के रोग चले गए तीन जन के सब पाप दे। हूँ गुण गाँव का अर्थ है घर में खंड पाठ करवाया, कीर्तन करवाया, गुरद्वार हाजरी भरी है, इस सारे से गुण गाए नहीं। इतने सिक्ख्या लैके घटो घट तीन गल् पाप ऐब अंदरले होमले रोग ये दूर करने से तीन जन के सब पाप दे, सब दोष दे, सब रोग दे, काम क्रोध लोभ दे, अभिमान दे, तीन जन के हर मार कडे पंच चोरा। ये गुरु की सिक्ख्या द्वारा पंज विकार साडे मन विचों चले जाते हैं। जब असी रब दे गुणा नूं गुरबाणी दे विचार द्वारा समझते हाँ तो उन्हां दी वरतों करते हैं। अज दे मेरी गल पाठ अंदर गुरु साहब महाराज जी की ये जो वार है ये आरंभ होने लगी है। 22 वार में 9 वार उत्ते 9 धुनिया लगाई ने। श्लोक वार के नाल लगभग गुरु अर्जन पातशाह जी ने लगाए ने। वार का असल रूप तौड़ी होंगे तो तौड़ी का जोड़ा विचार है सिद्धांत है उन होर सिखाने के समझाने वास्ते नाल श्लोक भी लगे हुए। तो पहले 2 श्लोक गुरु अमरदास महाराज जी के ने, पौड़ी गुरु रामदास महाराज जी के। गुरु सेवा से सुख पाया, सब सेवा आ गया। गुरु कह रहे जो महान कुछ देखेंगे तो सेवा का अर्थ तो खिदमत आता ना, उस सेवा का अर्थ सिक्ख्या भी आता है, शब्द विचार भी आता है, भावना भी आता है। गुर सेवा इस गुर सेवा का जोड़ा अर्थ है गुरु की सिक्ख्या नाल संबंध रखता है। गुरु की सिक्ख्या से चलने वाला मनुख सुख पाया, पक्के कन्ना ईड़ी में दिहाई ऐड में दो लाव आई। जब इस तरह की बंतर वाला शब्द आता है तो फिर यह अर्थ बनता है

और सामाजिक रीतियों में मचा के रखेगा। नानक नाम केना तो मिल है जिन हारो वेख नगर निहार, जिन हर वेख नाम केना तो मिला। एक देश उन्होंने समझ आता है जिन्होंने वैदिक सिक्ख्या द्वारा अपने दिमाग के अंदर जो रब के गुण पे हुए हैं उन्होंने समझ लिया। गुरु प्यारे वाले इस गल में समझ लो, साडे बच्चे ने असं स्कूल दाखिल कराते हैं तो बच्चा पहली जमात लेके है, अध्यापक ने उन्हें बाल उपदेश पढ़ाया, अध्यापक ने ए बी सी पढ़ाई, बच्चे ने ए बी सी सीख ली। एक असर बच्चे के दिले दिमाग के अंदर ए बी सी कही हुई है, अगर आपने समझा दी यदि वर्तन कर रहे हैं अगली क्लास में। रब के गुण साडे हिरदे विच साडे मन विच पए हुए हैं, गुरु के शब्द की विचार द्वारा उन्होंने वर्तन करनी है। वह फिर गुण मेरे हर वेले ना रहेंगे तो मेरी खुशी होगी। सेहत खजाना बख्श है जिस बख्शा तो खर्चा खाए खर्चे खाए। जिस तरह बच्चा बंदा पैसे कमाता है तो घर ला के आता है खर्चा है, सब्जी लिया है, मठियाई लिया है, कपड़े लिया है, राशन लिया है, सकता है। इस तरह गुरु के विचार में जो सू सिक्ख्या मिलती है ये साड़ी रास है, पूंजी है। इस रास में इस पूंजी की असी वर्तन करनी है, भाव इन्हें आप खर्चना इस अनुसार असं चलन का यत्न करना है। जिन्होंने बेनती की है कि आनंद कार्ज के उत्ते बहुत सारिया समाजिक रीतियां जोड़िया ने वो साडे परिवारों में आ चुकी ने, शब्द विचार द्वारा इन रीतियों असी सबने यत्न करना है। ये छड़ांगे तो गुरु जी विचार लवेंगे। गुरु प्यार वाले सतगुरों की बाणी अंदर भोलने का पाठ भी है, अलानिया भी हैं, किन्ने परिवार हैं जोड़े आनंद कार्ज को पहला इस बाणी का कीर्तन करते हैं या सुनते हैं या विचार शब्द विचार करते हैं। ये साड़ा घर नहीं है, असं वक् वक् धर्मां के रीति रिवाज जोड़े ने वो अपने घर के लिए लाए हैं। देख में असं खालसे लगते हैं पर रीति रिवाज साडे खालसियां वाले नहीं हुए। गुरद्वारे में मर्यादा लै लीए, घर भी लै लीए, जो पंच परमात्मा ने सानू मर्यादा दसी है वो अनुसार से चलने यत्न नहीं कर रहे। भावें नानक शाह कैलेंडर हो क्योंकि समा नहीं मेरे दिमाग ये थोड़ी गल करने यत्न करांगा, पर शब्द विचार द्वारा यह रह गया कि सब कहीं सेहत खजाना बख्श है जिस बख्शे तो खर्चा खाए। सेहत खजाना रब्बी गुणा का खजाना जोड़ा सतगुर के शब्द विचार द्वारा प्राप्त करता है वो तो आप वर्तदा क्योंकि वे को यह गुणा का खजाना इकट्ठा होगा। सतगुर जन हाथ ना आए कर मत माए। महाराज ने सतगुर की सिक्ख्या के बिना बंदे के हाथ में कुछ नहीं आ सकता। जिन्हें मर्जी कर्म कांड कर ले थक गए कर्म कांड कर दें पर सुख की प्राप्ति नहीं। नानक मन मुख जगत तन ही है अगे भुखा भुखा। जोड़ा अपने मन के पिछे तुरदा मन में कहेंगे नहीं तो जो उन्हें गुणा का खजाना इकट्ठा नहीं किया तो वर्तेगा की वो भुखा की खाएगा क्योंकि वे कोई गुणा की रात नहीं है। पौड़ी सब तो सब सदा सब तो दुख पाया। हे वाहेगुरु जी तू सारी सृष्टि ने तू सारी सृष्टि में पैदा किया है तो पैदा करके तू आप बैठे सब नाम तू सब तू सारे व्यापक है सारे तेन चाहते हैं। जिस दिन तू भगत खाए पाए जो खुद मन पाया भगत कटे में झाड़ी है

0: तो पलटना हो, ये साढ़े को गुण नहीं तो भलती, जो गुणा की वर्तों करते हैं यही परमात्मा की भलती है। तो क्या कहते उस मनुष्य की भगती उन्होंने गुणा में प्रवान करना जिन्हें मन करके तेरे गुणा में वरते है। मन भाया मन सहारी है, तेरे मन में भा गए साढ़े मन के अंदर जो भी सिक्ष्या द्वारा रबी गुण प्रगट हो। जो हर कल तहारे सो सल करम तेरा चढ़ाया। वाहगुरु जी जो तुम फिर पाँगा है असं फिर वो अनुसार कर्म करते हैं, क्योंकि सू समझ आ गई सदना की बाणी विचार द्वारा। तो फिर असं तेरे कर्म करते हैं संतोष के धारनी हैं, प्यार के धारनी हैं, मिठा बोलते हैं। सलामे हर सरना तो वड़ा जो संत जना की पैर रखदा। जेड़ा ये राह उत्ते चलता है वो पैज रखी जाती है। देखो सड़क के नियम ने, उन्होंने नियमों उत्ते जोड़ा चलेगा तो बाद जित अपने घर आ जाएगा। जोड़ा सड़क के नियम तोड़ना यत्न करेगा वो एक्सीडेंट भी हो सकता है। इस वास्ते सर जी सू समझा रहे हैं जो संत जना की पैज रखता आया। तो संत जन का अर्थ ये नहीं कि जिन्हें पहरावा पहन वो संत है। संत अर्थ है दृष्टि, संत अर्थ है मनुख जन सुधारण कीर्ति मनुख जिज्ञासू। यदि पैज जोड़ा वो राह पर चलन लग पाया उसकी पैज जी है तो परमात्मा आप रखता है। गुरु प्यार वाले अज की कथा के अंदर दो श्लोक से पटेल जी विचार की। सतगुरु ने सानू समझाया कि हे बंदे जो तू आत्मिक करके सुख की प्राप्ति करनी चाहता है तो सुख तेन गुरु की सिक्ष्या के पुन करके मिल सकता है, पर होर कितने तेन सुख की प्राप्ति नहीं। वो सेवा से सुख पाई है, होर था सुख ना भार गुरु की सिक्ष्या के सुख मिलना होर थावा तो नहीं। गुरु का सब मन भेदिया सदा वसा तेरे नाल, सदा वसे हर नाल। गुरु के शब्द द्वारा अपने मन में गुण लै, फिर ये शब्द के विचार गुण परमात्मा के गुण में हर रोज की सहायता करेंगे। वक् वक् गुरबाणी के प्रमाण दे के इस समय यत्न किया है। जेड़ा मनुख सतगुणों की बाणी में जुड़िया होया है वो हरिया भरिया है। सतगुणों की बाणी का साथ छड़ांगे जिवें दाने आटा बन गए, खखड़ी टूंबा टूंबा होकर उड़ गई। इस तरह साडा जीवन है टाणी नाल अंब लगे है पर हलारा खा गया, कोई झटका खा गया, एक पासे अंब जहा लगता एक पासे सड़िया गया है सुकया गया है। इस तरह ही असं बहुत सारे झटके समाज में धर्म की दुनिया अंदर खाधे हुए हैं। इस वास्ते देखने खालसा भी लगते हैं पर अंदर साढ़े रीति रिवाज ने वो वक् वक् धर्मों के भी पे हुए हैं। इस शब्द के विचार द्वारा उन्होंने तरीकों को दूर करिए, धर्म के आए हुए अंधविश्वास को दूर करिए। बने हुए समय अनुसार कल भी शब्द की एक विचार की सेवा दो दिन शीतगंज साहब फिर जो समा बनया आप संगत के पुल बैठ के शब्द की विचार की जाएगी, क्योंकि पुल बच्चे गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी के नानशो कलंग के मुताबिक 5 जनवरी में मस्कत के गुरपुर मनाने वास्ते संगतन श्रद्धा पत्र से जाना। इसलिए 3 हाजरियां इस स्थान के उत्ते, 2 हाजरियां गुरुद्वारा शीतगंज इस स्थान के उत्ते संगत नाल साझियां करनियां ने। तो ना चुकान लिखियां प्यारे, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।
1: Thank you for listening to CISK Sikh Radio 94.3 FM, broadcasting from the Western Singh Sabha Gurdwara in Williams Lake, British Columbia, Canada. You may contact our broadcast center by telephoning 250-392-3874 or by email at singhsabha2@gmail.com. Waheguru Ji Ka Khalsa, Waheguru Ji Ki Fateh. The pure belong to God, all victories belong to God.
2: ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਸਿੱਖ ਰੇਡੀਓ 94.3 FM। ਅਸੀਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਵੈਸਟਰਨ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਵਿਲੀਅਮਸ ਲੇਕ BC ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਇਸ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 250-392-3874। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ ਜੀ 250-392-3874। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਸਾਨੂੰ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ singhsabha2@gmail.com singhsabha2@gmail.com। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।

0: आध्यात्मिक गुरु जो रिश्ता मित्र वाला, बाकी सारे रिश्ते बने बनाए उन्होंने, एक मित्रता का रिश्ता जेड़ा बनाना पैदा। खुशी इसलिए ज्यादा होंगी है क्योंकि आप बनाई है, इनके चोन मेरी अपनी, इसलिए असल मेरा रिश्ता यह है। इस तरह बाकी सारे रिश्ते बने बनाए आते हैं, सिखी का रिश्ता आप बनाना पड़ता। ज्यादा खुशी है क्योंकि ये चोन मेरी अपनी है। सिख नू इसे लिए तसली है क्योंकि सिख बनना उनकी मर्जी से मिलता है, उनके अंदर का चाव। रिश्ता बनिया बनाया बिल्कुल नहीं आता, मत समझे हो बस सिख के घर जन्म लै लिया सिख ही सिख। बता ऐसा ख्याल साढ़े मन में कम कर रहे हैं, इन्ने अवेसरे हो जाने कि सारी जिंदगी सिखी पढ़न की कोशिश ही नहीं करते। श्री गुरु ग्रंथ साहब को समझ लगता भी बस सिख के घर जन्म लै लिया असि सिख ही। जिमें डॉक्टर के घर
1: Thank you for listening to CISK Sikh Radio 94.3 FM, broadcasting from the Western Singh Sabha Gurdwara in Williams Lake, British Columbia, Canada. You may contact our broadcast center by telephoning 250-392-3874 or by email at singhsabha2@gmail.com. Waheguru Ji Ka Khalsa, Waheguru Ji Ki Fateh. The pure belong to God, all victories belong to God.
2: ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਸਿੱਖ ਰੇਡੀਓ 94.3 FM। ਅਸੀਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਵੈਸਟਰਨ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਵਿਲੀਅਮਸ ਲੇਕ BC ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਇਸ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 250-392-3874। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ ਜੀ 250-392-3874। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਸਾਨੂੰ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ singhsabha2@gmail.com singhsabha2@gmail.com। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।

कैसे गुण गई है, उठत बैठत ठेंगा पर है, तब कत मूंडल कई है, हर बिन बैल बिराने हुई है, फाटे नाकन टूटे कांधन, कोदू को पोस खई है, रहाउ सारू दिन डोलत बन महिया, अजू न पेट आ गई है, जन भगतन कहो कहो न मानो, कियो अपनो पई है, दुख सुख करत महाप्रम, बूढ़ अनक जोन परमई है, रतन जन्म खोयोगो, प्रभ सिम बिसरयो, यही अवसर कत पई है, प्रमत फिरत तेल कहके कप ज्याऊं, गात बिन रैन बिहाई है, कहत कबीर राम नाम बिन, मूंड तुने पछताई है, गुजरी करती जा, मुस्त मुस्त रोवै कबीर की माई, ए बारक कैसे जीव मेर गुराई, तनना बुनना सब तजे उह शरीर, हर का नाम लिख लियो शरीर राव, जब लग तागा बाहो बेही, तब लग विसरै राम सुनेही, ओछी मत मेरी जात जला, हर का नाम लहो मैला, कहत कबीर सुनो मेरी माई, हमरा इनका दाता एक रघुराई, गू

ताशों प्रीत कटावों जव अपनों स्वामी सुख मानें तामह शोभा पावों दासन दास रेन दासन की जन की टहल कमावों सर्वपू सुख बड़ियाई नानक जीवों मुखों